0: শ্ৰোতাসকলে ইমান পৰে বন্দনা অনুষ্ঠানটি শুনিলে। আজিৰ বন্দনা অনুষ্ঠানটি সজোৱা হল ক্ৰমে পাপৰি দাসৰ কণ্ঠত মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ বিৰচিত বৰগীত, ভাৰতী চৌধুৰীৰ কণ্ঠৰ লোকগীত, মুকুল বৰুৱা আৰু সংগীবিন্দৰ কণ্ঠৰ ভক্তিমূলক গীত, ছলিমুদ্দিন তালুকদাৰ আৰু সংগীসকলৰ কণ্ঠৰ জিকিৰ আৰু ৰুবি চৌধুৰীৰ কণ্ঠৰ ভজনেৰে। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তেক পিছতে বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মে নবীন সক্সেনা। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों से अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और पढ़ाने के नए तरीकों का इस्तेमाल करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने और उनके चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच और जिज्ञासा की भावना विकसित करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने सभी समर्पित शिक्षकों के योगदान के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि वो ऐसी पीढ़ियों का निर्माण करते रहे जो देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें महान शिक्षक बताया। शिक्षक दिवस पर हर वर्ष 5 सितंबर को डॉ. राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये शिक्षक 27 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश और 6 केंद्रीय संस्थानों से चुने गए हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और प्राध्यापकों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। कॉलेज की स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्ष में इस संस्थान ने कई विद्वान, पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज चेन्नई के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो इंडिया वॉल्स में शामिल होंगे। ये हृदय से जुड़ी बीमारियों के इलाज को बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
2: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी से न्यायिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ग्रस्त त्रिशूली बाजार इलाके से 3 और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 5 साल का एक बच्चा भी शामिल है। सुरक्षित निकाले गए भारतीयों की संख्या 169 हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 275 भारतीय अब भी लापता हैं। वहीं चीन से 1,907 भारतीय सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि भारत ने नेपाल में बाढ़ के बाद अब तक लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है। भारत आगे भी नेपाल की जरूरत के अनुसार मदद जारी रखेगा।
3: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
4: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
3: And recovery efforts in the country.
1: महिला क्रिकेट में T20 एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उधर विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष डबल्स की जोड़ी आज चाइना मास्टर्स के सेमीफाइनल में मलेशिया की जोड़ी के साथ खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया। 48 शिक्षकों को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। सरकार ने ISO टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल की अनुमति तथा कड़े सुरक्षा नियमों का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत संघर्ष समाप्त करने में यूक्रेन और रूस के साथ निरंतर संपर्क में है। संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका का सटीक आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान किया। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण अहमदाबाद में आज से शुरू और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने और चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
1: हर वर्ष 5 सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति, प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह अवसर राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों और शिक्षाविदों की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करता है। शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन को बदलते हैं, पीढ़ियों को दिशा देते हैं और समाज की नींव को मजबूत करते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संगठनों से हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल शाम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षकों को बच्चों को 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और उन्हें हर क्षेत्र में सक्षम बनाने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्ष में इस संस्थान ने कई विद्वान, पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज चेन्नई इंडिया वॉल्व सम्मेलन में शामिल होंगे। यह हृदय से जुड़ी बीमारियों का उपचार बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। उपराष्ट्रपति गिंडी में इंडिया वॉल्व पंजिका का विमोचन भी करेंगे। सरकार ने ISO टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल तक की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोलियम संशोधन नियम 2026 का मसौदा जारी किया है। इसमें आवेदन प्राप्त होने पर 7 कार्य दिवस में मंजूरी देने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार पेट्रोलियम से भरे या पेट्रोलियम के लिए इस्तेमाल होने वाले ISO टैंक कंटेनरों को बिना अनुमति आयात नहीं किया जा सकेगा। आवेदन पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन की ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करना होगा और इसके साथ जरूरी तकनीकी और सुरक्षा दस्तावेज जमा कराने होंगे। मंत्रालय ने मसौदे पर 30 दिन के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद नियमों में बदलाव किया जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है।

0: ताकि आप जब 60 साल के होंगे
1: आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े,
0: आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल शुरू हो गया। सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर सुरक्षा और तैयारियां की जा रही हैं। आज मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। यातायात पुलिस ने रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस और यूक्रेन के लगातार संपर्क में है। वॉर्सो में पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिरोस्की के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होता।
5: इंडिया बिलीव्स दैट एंडलेस वॉर,
6: भारत का मानना है कि अंतहीन युद्ध समाप्त होना चाहिए और युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। हर अतिरिक्त दिन का अर्थ है अधिक मौतें, अधिक तबाही, दोनों देशों के लिए अधिक नुकसान और बाकी दुनिया के लिए अधिक लागत। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस चिंता को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया था, इसलिए हमारे प्रयास बातचीत और कूटनीति को बढ़ावा देने पर केंद्रित होने चाहिए।
5: प्रमोटिंग डायलॉग एंड डिप्लोमेसी,
4: विदेश मंत्री ने कहा कि भारत संघर्ष समाप्त करने में हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर रूस और यूक्रेन का दौरा करेंगे। दोनों का उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए शांति समझौते की कोशिश करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीका का वास्तविक आकार बेहतर ढंग से दिखाने वाले नए विश्व मानचित्र के पक्ष में मतदान किया है। 164 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि अमेरिका ने इसके विरुद्ध मतदान किया। 6 देश मतदान से अलग रहे। मर्केटर मानचित्र में अफ्रीका का आकार वास्तविकता से बहुत छोटा दिखाई देता है, जबकि अफ्रीका ग्रीनलैंड से लगभग 14 गुना बड़ा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और Facebook पर All India Radio News को फॉलो करें।
4: मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की आशंका है। लखनऊ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भी कई जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं।
8: राज्य में अयोध्या, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, चित्रकूट और बाराबंकी सहित 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव

0: प्रभावित हैं। पशुपालन विभाग के अनुसार करीब 70,000 पशु भी प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की सुविधा के लिए 700 नावों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं बाढ़ राहत शिविर और सामुदायिक रसोई घर भी संचालित किए जा रहे हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में गंगा और सोन नदियों के जलस्तर में कुछ कमी आने की संभावना है। हालांकि पटना में पुनपुन नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण गया पटना रेलखंड पर रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कल पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा दही हांडी उत्सव आज महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: मुंबई और आसपास के जिलों में दही हांडी भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा एक पारंपरिक उत्सव है। इसमें गोविंदा मानव पिरामिड बनाकर मिट्टी के हांडी फोड़ते हैं। इस उत्सव के दौरान कुछ गोविंदा कभी कभी चोटिल हो जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए बीएमसी ने अस्पतालों को पूरी तरह तैयार रहने और घायल गोविंदाओं को मुफ्त उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने 1,60,000 गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की है। अस्पताल में भर्ती होने, स्थायी पूर्ण या आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में 1,00,000 से 10,00,000 रुपए तक का बीमा लाभ दिया जाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल शाम प्रतियोगिता का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत आने वाले वर्षों में खेलों का प्रमुख केंद्र बनेगा।
3: 19 देशों से 108 से ज्यादा पैरा एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं उस वक्त कि अहमदाबाद, गुजरात और भारत आने वाले दिनों में खेल जगत के, चाहे वो ओलंपिक्स से जुड़े हुए खेल हो, सभी प्रकार के खेल का एक बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला है।
1: एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: धन्यवाद मुकेश। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यूएस उपग्रह के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने लिखा है, इसरो ने अंतरिक्ष में स्थापित किया तीसरा नेत्र। जनसत्ता की सुर्खी है, देश के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण, इसरो की एक और कामयाबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो और उद्योग जगत की साझेदारी को अंतरिक्ष क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। कहा, हमारे देश के लिए गर्व का पल। दैनिक जागरण के अनुसार, प्रधानमंत्री जिस प्रोजेक्ट का करेंगे लोकार्पण, उसकी 6 महीने तक होगी निगरानी। कुछ घटनाओं से सीख लेकर NHAI ने कार्यक्रमों की SOP में जोड़े नए दिशा निर्देश। दैनिक भास्कर ने शिक्षक दिवस पर विशेष सुर्खी से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विशेष लेख साझा करते हुए लिखा है, विजेता होते हैं शिक्षक, लेकिन शिष्य से पराजित होने की शिक्षा उन्हें महान बनाती है। पंजाब केसरी ने शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के लेख पर विकसित भारत के सफर में शिक्षकों की भूमिका देते हुए लिखा है, ये दिन सिर्फ सराहना करने के एक दिन से कहीं ज्यादा मायने रखता है। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मथुरा में रात 12 बजते ही हर तरफ उल्लास और हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की का उत्साह देखने को मिला। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, ब्रज में बाजे बधाई नंद घर आई कन्हाई। नवभारत टाइम्स ने चमत्कार शीर्षक से दिया है, नेपाल में सुरंग से 9 दिन बाद 2 को जिंदा बचाया, जन्माष्टमी पर सुरक्षित निकाले गए। फोरमैन संजय शाह ने कहा, हरे कृष्ण महामंत्र जपता रहा। अमर उजाला की सुर्खी है, सुरंग में गूंजा जिंदगी का मंत्र। राजस्थान पत्रिका ने बदलेगी गैजेट की दुनिया देते हुए लिखा है, बेकार जाने वाली गर्मी से भी बनेगी काम की बिजली।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया। 48 शिक्षकों को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। सरकार ने ISO टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल की अनुमति तथा कड़े नियमों का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री S. जयशंकर ने कहा, भारत संघर्ष समाप्त करने में यूक्रेन और रूस के साथ निरंतर संपर्क में है। संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका का सटीक आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान किया। और दुबई में

0: महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी।

0: ঘৰটি গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানত ভাগ লবলৈ আপুনি আমালৈ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব পাৰে। আমাৰ নম্বৰ হৈছে 6003166944। পুৱা প্ৰচাৰিত ফোন ইন অনুৰোধৰ গীতৰ অনুষ্ঠান সুৰধ্বনি আৰু সন্ধিয়া প্ৰচাৰিত সান্ধ্য আলাপ অনুষ্ঠানটিলৈ আলোচিত বিষয় সম্পৰ্কত আপোনাৰ মতামত আদি প্ৰেৰণ কৰিবলৈ আপুনি আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটি আজিয়েই টুকি থওক। আমাৰ নম্বৰ হৈছে 6003166944। আপোনাৰ সৈতে আমাৰ যোগাযোগৰ এক নতুন মাধ্যম হৈছে হোৱাটছএপ মেছেজ। আমাৰ নম্বৰ 6003166।
1: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 12 বজাৰ পৰা হিন্দীত, 12:05 ইংৰাজীত বাতৰি আৰু 12:10 পৰা সৈন্যবাহিনীৰ উদ্দেশ্যে প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠান শুনিবলৈ পাব।
2: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই বিশাল শৰ্মা। देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान कर रही हैं। इस वर्ष 3 विभागों से कुल 82 शिक्षकों और शिक्षाविदों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनमें स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के 48 शिक्षक, उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षक एवं संकाय सदस्य और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के 13 कौशल प्रशिक्षक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देश भर के शिक्षकों को नमन किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षक केवल शैक्षणिक ज्ञान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली एक महान जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुलाकात की झलकियां साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। इसके लिए शिक्षकों को अपने भीतर के बच्चे को भी जीवित रखना चाहिए। श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय पर चिंता जताई।
3: एक विषय है स्क्रीन टाइम, अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा। फिर खेल कूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, मैंने एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकते, और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
2: प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए बच्चों को कक्षा से बाहर ले जाने और उन्हें वास्तविक जीवन के कौशल तथा विभिन्न कार्यों से जोड़ने के महत्व पर जोर दिया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि शिक्षक ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास के साथ छात्रों के भविष्य को सशक्त बनाते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में श्री जोशी ने महान विद्वान, दार्शनिक और शिक्षक डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल शुरू हो गया। सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां और सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। आज मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक मार्गों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। 22 से 28 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में वे भारत का पक्ष रखेंगे। ये उच्च स्तरीय सत्र ऐसे समय हो रहा है जब दुनिया कई भू राजनीतिक संघर्षों और बढ़ते आर्थिक दबावों का सामना कर रही है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के कारण खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतें भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित त्रिशूली बाजार क्षेत्र में 5 वर्षीय बच्चे सहित 3 और भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इससे शरणार्थियों की कुल संख्या 169 हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि 1907 भारतीय चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास भारतीय शरणार्थियों को हवाई मार्ग से वापस लाने में मदद कर रहा है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों तक पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has called upon teachers to go beyond textbooks and play a greater role in preserving childhood while shaping the lives of students. He made these remarks while interacting with the National Teachers Day Award winners in New Delhi yesterday. While sharing the glimpses of the interaction with teachers in a social media post, the Prime Minister emphasized that teachers must ensure that the child within every student remains alive, and for that, they should also preserve the child within themselves. He stressed that bringing about real change in children requires teachers to become a part of their lives rather than limiting themselves to the syllabus.
3: मैं पूरी शिक्षा जगत से ये कहना चाहता कि हमें पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके, सिलेबस से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते। टीचर का काम है कि उसके भीतर का बचपन बना रहे।
1: Highlighting key health and social issues, Mr. Modi expressed concern over excessive screen time among children and suggested encouraging sports, outdoor activities and creative pursuits as effective ways to reduce screen addiction.
3: एक विषय है स्क्रीन टाइम, अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा। फिर खेल कूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, मैंने एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकता। और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
1: President Draupadi Murmu has called upon teachers and educators to continually update their knowledge, embrace technology and adopt innovative teaching methods. In a message on the occasion of Teachers Day today, the President said teachers and educators play a vital role in nurturing talent and strengthening character through their guidance and mentorship. President Murmu also paid tribute to former President Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. President Draupadi Murmu conferred the National Teachers Awards on 48 school teachers in New Delhi on the occasion of Teachers Day. The 48 selected teachers are from 27 states, 7 union territories and 6 central government organizations. Vice President C.P. Radhakrishnan and Home Minister Amit Shah have extended their greetings on the occasion of Teachers Day. Prime Minister Narendra Modi will participate in the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce in New Delhi today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Sri Ram College of Commerce, part of the University of Delhi, is one of India's premier institutions of higher education. It is a distinguished centre of learning in commerce, economics and management. The government has proposed allowing up to 3-year permissions for importing and transporting petroleum in ISO tank containers and introducing a 7-working-day deemed approval mechanism for complete applications as part of proposed amendments to the Petroleum Rules 2002. The Ministry of Petroleum and Natural Gas issued a draft notification on Thursday proposing the Petroleum Amendment Rules 2026. The External Affairs Ministry has said 3 more Indian nationals, including a 5-year-old child, have been rescued from the flood-hit Trishuli Bazaar area of Nepal
4: bringing the total count of Indian evacuees to 169. Sharing broader updates on the safety of Indian nationals while briefing media in New Delhi yesterday, MEA spokesperson Randhir Jaiswal said 275 Indian nationals remain missing. He noted that 1,907 Indians have safely crossed over to Nepal from China. Mr. Jaiswal said that the Indian Embassy in Kathmandu is facilitating the return of Indian evacuees on flights back home. Meanwhile, the death toll from the floods in the Himalayan nation rose to 1,344 after rescue workers recovered more bodies from affected areas. The rising water levels of major rivers in Bihar, including Ganga, Gandak and Kosi, continue unabated. Flooding has affected 16 districts, while the situation remains serious in 14 districts, including Patna. According to the Water Resources Department, the Ganga River in Patna is flowing nearly 2 meters above the danger mark. In women's cricket, India will take on arch rivals Pakistan in the final Group A clash of T20 Asia Cup at Dubai International Stadium at 8 p.m. Indian Standard Time tonight. And that is the end of this news bulletin.
5: ये आकाशवाणी घाटी का प्राग ज्योतिषपुर है. मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर. अभी दिन के 12:10 हुए हैं और अब हम आरंभ करते हैं सैनिक भाइयों के लिए आज का प्रसारण.

आज के इस प्रसारण में शिक्षक दिवस के विशेष शुभकामनाओं के साथ हाजिर हूं मैं करुणा श्रीवास्तव। हम आपके लिए लेकर आए हैं गीत और संगीत का खजाना। लेकिन गीतों के सुहाने सफर पर चलने से पहले आइए जानते हैं।

1:10 पर हम हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम गुंजन और 1:40 से हम आपको सुनाएंगे प्रादेशिक संगीत। दिन के 2 बजे से बारी बारी से रिले किया जाएगा अंग्रेजी और हिंदी में समाचार।

0: आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम होगा नजराना और इसके साथ ही आज के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा और आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का पहला गाना जिसे हमने लिया है फिल्म उड़ान से। आवाजें हैं रमन महादेव, अमिताभ भट्टाचार्य और साथियों की।
1: इसकी माँ,
2: किसकी माँ?

0: अकाल ना होता,
1: अरे भाई अकाल ना होता,
0: उड़ीसा में बाढ़ ना।

ये बेहाल का बचा जो हाल भी हाल खा जाए, बेमौत मरते मन का ये मलाल खा जाए, लालू का लाल खा जाए, नक्सलबारी की नाल खा जाए, बचपन का धमाल खा जाए, बुढ़ापे की शाल खा जाए, हया तो छोड़ो बहया की चाल भी खा जाए, और अगर परोसा जा सके तो ख्याल भी खा जाए।

अगला गीत सुनिए तू झूठी मक्कार फिल्म से, आवाजें हैं सुनील चौहान और शाश्वत सिंह की।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। आज 5 सितंबर है यानी शिक्षक दिवस, तो आइए हम आपको सुनवाते हैं तारे जमीन पर का गाना। आवाज है रहमान महादेव की। गीत के बोल लिखे हैं पारसून जोशी ने और संगीत है शंकर ईशान लोय का।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 282.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला कार्यक्रम है स्वर संगम, लेकिन उसके पहले आइए डालते हैं कल के कार्यक्रमों पर एक नज़र।

कल रविवार है और हर रोज की तरह हमारा कार्यक्रम शुरू होगा दिन के 12:10 पर। 12:12 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत और 12:30 से पेश किया जाएगा दैनिक कार्यक्रम आज का गीत।

एक बजकर 10 मिनट पर गीतिका और 1:40 से हम आपको सुनवाएंगे शीर्षक संगीत। दिन के 2 बजे से बारी बारी से रिले किया जाएगा अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। कल के प्रसारण का आखिरी कार्यक्रम होगा गीत अपना धुन पर आई, जिसे आप सुनेंगे दिन के 2:30 बजे से। इस कार्यक्रम के साथ ही कल के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। तो ये थी कल के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी, और अब सुनिए स्वर संगम। सबसे पहला गीत सुनिए शान की आवाज में मैरीगोल्ड फिल्म से।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडिया वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अब से हमारे कार्यक्रम आप डिब्रूगढ़ केंद्र से भी सुन सकते हैं 529.1 मीटर पर। और अब हम हाजिर है लेकर कार्यक्रम गुंजन। इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए पिया का घर फिल्म का गीत। आवाज़ है किशोर कुमार की।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है प्रादेशिक संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ तेलुगु गीत। सबसे पहले सुनिए हिट्स ऑफ एसपी बालासुब्रमण्यम एल्बम से। एसपी बालासुब्रमण्यम और अनुराधा श्रीराम की आवाज़ में ये पहला गीत।

0: Rajasthan and West Madhya Pradesh for today. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu says, Viksit Bharat will only be possible with quality education, confers national awards on 48 school teachers. Prime Minister Narendra Modi urges teachers to go beyond textbooks while shaping lives of students, also calls for less screen time, more sports activities for children. Prime Minister to address centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce in New Delhi this evening. Bihar flood situation remains critical in 14 districts. Relief and rescue operations underway. India delivers 95 tons of relief material to flood-hit Nepal to send more supplies and Bailey bridges. In badminton, Indian men's doubles pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Malaysian duo in Chinese Masters semi-final in Shenzhen this evening. And in women's cricket, India to take on arch-rivals Pakistan in final Group A clash of T20 Asia Cup in Dubai tonight. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विकसित भारत का सपना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से ही साकार होगा। उन्होंने 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने की अपील की। उन्होंने बच्चों का स्क्रीन समय कम करने, खेलकूद और बाहरी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव अभियान जारी। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को 95 टन राहत सामग्री भेजी और अधिक राहत सामग्री के साथ बेली ब्रिज भेजे जाएंगे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी से होगा और T20 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज रात भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वो सही मायनों में प्रगतिशील समाज होता है।
2: हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र निर्माता हैं।
2: द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है। शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को ये पुरस्कार दिए गए। उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इनमें केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों के 12, राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 5 तथा पॉलिटेक्निक के 4 शिक्षक और संकाय सदस्य शामिल हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में देशभर के शिक्षकों को उनकी निस्वार्थ सेवा और भारत के भविष्य को आकार देने में उनके योगदान के लिए नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार

0: सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में मुलाकात की झलकियां साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। इसके लिए शिक्षकों को अपने भीतर के बच्चे को भी जीवित रखना होगा। श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई।
1: एक विषय है स्क्रीन टाइम, अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा। खेल कूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, मैंने एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकते। और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
0: प्रधानमंत्री ने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की।
1: ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा सा नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस उसके कारण क्या भय है? प्रकार से मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए, और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते।
0: प्रधानमंत्री ने स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता का भी उल्लेख किया।
1: मैं काशी का सांसद हूँ, तो मैंने वहाँ एक अभियान लिया ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का, और मुझे खुशी है कि इन दिनों महिलाएं सामने से आकर के अपने विषय में चेकअप करा, पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। दूसरा एक अच्छा अनुभव आया, अभी तो एक दिन में मैक्सिमम लोगों का चेकिंग करने का ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने रजिस्टर किया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए बच्चों को कक्षा से बाहर ले जाने और उन्हें वास्तविक जीवन के कौशल तथा विभिन्न कार्यों से जोड़ने के महत्व पर जोर दिया। गृह मंत्री अमित शाह, शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देशवासियों और शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि शिक्षक पीढ़ियों से विद्यार्थियों को ज्ञान की राह दिखा रहे हैं और देश की निरंतर प्रगति में योगदान दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक वीडियो संदेश में कहा कि शिक्षक ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास के साथ छात्रों के भविष्य को सशक्त बनाते हैं।
2: इन शिक्षकों ने अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग तरीकों से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। किसी ने शिक्षण में नया प्रयोग किया है, किसी ने तकनीक का प्रभावी उपयोग किया है, किसी ने वंचित और कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के लिए काम किया, तो किसी ने विज्ञान, खेल, कला और कौशल के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने का काम किया है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे समारोह को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। यहां वाणिज्य, अर्थशास्त्र और प्रबंधन की पढ़ाई होती है। कॉलेज की स्थापना 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का मंच कल शुरू हो गया। शिखर सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां और सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। आज मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक मार्गों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। 22 से 28 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में वे भारत का पक्ष रखेंगे। ये उच्च स्तरीय सत्र ऐसे समय हो रहा है जब दुनिया कई भू राजनीतिक संघर्षों और बढ़ते आर्थिक दबावों का सामना कर रही है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के कारण खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतें भी

0: चिंता का विषय बनी हुई है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित त्रिशूली बाजार क्षेत्र से 5 वर्षीय बच्चे सहित 3 और भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इससे शरणार्थियों की कुल संख्या 169 हो गई है। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं, वहीं 1907 भारतीय चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास इन शरणार्थियों को हवाई मार्ग से वापस लाने में सहायता कर रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा हुआ नहीं है। प्रवक्ता ने बताया कि 26 अगस्त को विनाशकारी बाढ़ के बाद से भारत ने नेपाल को लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार सहायता जारी रखेगा। आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर अधिक फोरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अतिरिक्त सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। बेली ब्रिज पूर्व निर्मित और मॉड्यूलर स्टील पुल होता है, जिसे कम समय में और बिना भारी मशीनों के आसानी से जोड़ा या स्थापित किया जा सकता है। इस बीच नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या कर 1344 हो गई है। खोज और बचाव अभियान जारी है। लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने तेलंगाना में एक महिला मंत्री को हटाए जाने को अन्यायपूर्ण बताया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में डॉ. त्रिवेदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की चुप्पी पर सवाल उठाया। झारखंड में प्रश्न पत्र लीक का उल्लेख करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि ये सिर्फ प्रश्न पत्र लीक नहीं बल्कि प्रश्न पत्रों की लूट थी।
2: जो कुछ झारखंड में तथ्य प्रकाश में आया है उसने यह साफ किया है कि ये पेपर लीक नहीं बल्कि पेपर लूट है, और इस लूट की छूट कौन दे रहा है ये कम से कम राहुल गांधी जी को बताना चाहिए। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि जितने भी राजनीतिक दल दिल्ली में परीक्षा के विषय को लेकर दहाड़ और चिंगाड़ रहे थे, झारखंड के मुद्दे के ऊपर 3 बंदर हो गए हैं।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषय की पुनर्परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। अंग्रेजी की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। वाणिज्य की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। इन तीनों विषयों की परीक्षा पेपर में कुछ गलतियों की शिकायतों के बाद दोबारा आयोजित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। लगातार नदियों के उफान पर रहने से नए क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा है। एक रिपोर्ट।
3: बिहार में गंगा, गंडक, कोसी समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। नदियों में उफान से 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। पटना समेत 14 जिलों में हालात गंभीर बने हुए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर बह रही है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि इसके गांधी घाट गेज स्थल पर नया उच्च जलस्तर सृजित होने की आशंका है। इसके चलते नदी के प्रवाह क्षेत्र विशेषकर दियारा क्षेत्रों में दबाव बढ़ सकता है। विभाग ने संबंधित जिलों को आपदा के मद्देनजर सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज राष्ट्रीय राजधानी के अलग अलग हिस्सों में हल्की से तेज बारिश हुई। और अब बात खेलों की। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी आज शेंजन में मेंस डबल्स सेमीफाइनल में मलेशियाई जोड़ी नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी कियोंग से खेलेगी। भारतीय जोड़ी ने कल क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन को हराया था। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। महाराष्ट्र में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा दही हांडी उत्सव आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: मुंबई और आसपास के जिलों में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा पारंपरिक उत्सव दही हांडी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस आयोजन में युवा प्रतिभागी मानव पिरामिड बनाकर ऊंचाई पर लटके दही दूध या मक्खन से भरी मटकी फोड़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 1,60,000 गोविंदाओं के बीमा कवरेज की व्यवस्था भी की है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विकसित भारत का सपना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से ही साकार होगा। उन्होंने 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव अभियान जारी। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को 95 टन राहत सामग्री भेजी, और अधिक राहत सामग्री के साथ बिलीब्रिज भेजे जाएंगे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी से होगा। और T20 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज रात भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: समाचार के बाद एक बार फिर आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और डियरिंग फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। और हम हाजिर है लेकर कार्यक्रम नजराना। तो आइए इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं आशा भोसले के गाए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है लाजवंती।

अगला गीत सुनिए फिल्म कश्मीर की गली से, आवाज़ है मोहम्मद जफ़ी की।

इस गीत के साथ ही नजराना कार्यक्रम यही समाप्त होता है और समाप्त होता है सैनिक भाइयों के लिए आज का प्रसारण। कल 12:10 पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए करुणा श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

वाणी आकाशवाणी आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो टॉक।

0: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
1: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी रेनबो 102.6 के माध्यम से प्रस्तुत होने वाले खास कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। रेडियो डॉक्टर में हम एक खास विषय लाते हैं जो हमारी लाइफस्टाइल से, हमारी ऐसी समस्याओं से जुड़ा है जो कि हमें जिंदगी में कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। इसके लिए आपको कहीं दूर नहीं जाना है, बस एयरवेव्स 102.6 के इस रोजाना प्रतिदिन आने वाले कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर से 3 से 4 दोपहर में जुड़ना है और अपनी समस्याओं को लेकर बस यूं ही निदान पाकर जब आप सफल होंगे तो यकीन मानिए जो खुशी होगी ना, वो जो दिल से खुशी होगी वो हमसे कनेक्टेड होगी, क्योंकि हमारी फ्रिक्वेंसी दिल से दिल तक काम कर रही है। रेडियो डॉक्टर में हमारा आज का विषय है स्पाइनल डेफोर्मिटीज टाइप्स कॉसेस एंड ट्रीटमेंट, रीढ़ की हड्डी से जुड़े विकार और क्या प्रकार हो सकते हैं कारण और इलाज। सभी तरह की रीढ़ की हड्डी से जुड़ी विकारों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर भावुक गर्ग। आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एम्स से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: धन्यवाद।
1: तो अपने सभी लिसनर्स के लिए बता दूं कि हम डॉक्टर से पहले तो जान लेते हैं कि ये बीमारी क्या है, क्या डेफोर्मिटी हो सकती है रीढ़ की हड्डी में, लेकिन आपको भी बता दूं अगर आप जानते हैं और ऐसी किसी बीमारी से आप ग्रसित हैं या प्रॉब्लम में हैं तो आप हमसे जरूर कनेक्ट करें। डॉक्टर, आपके स्वागत के साथ साथ हमारे बहुत से लिसनर्स के मैसेजेस आने लग गए हैं और सब जानना चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या, रीढ़ की हड्डी के जो विकार हैं इस पर बात करने से पहले इसको जान लेते हैं।
2: देखिए, रीढ़ की हड्डी के जो विकार हैं, जिसको हम बेसिकली जो डिफॉर्मिटीज की बात करते हैं, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं कुबड़ापन, जैसे आपने देखा होगा कि कहीं बच्चे हैं या बड़े में भी है स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉलम है वो टेढ़ा हो जाता है
1: जी।
2: अब ये टेढ़ा जो है या तो साइड में कर्व हो सकता है जिससे कि स्पाइन जो है वो सी शेप का हो जाता है, या फिर ये जो है पीछे की तरफ भी कुबड़ निकल सकता है, और ये यूजली बच्चों में कॉमन होता है, बट आज की तारीख में बड़ों में भी ये, चूंकि हमारी एज जो जीने की एज है वो काफी बढ़ गई है, तो उसकी वजह से एल्डरली एज ग्रुप में भी देखने जाने लगा है, जिसको हम डीजनरेटिव स्कोलियोसिस कहते हैं, जो कि डीजनरेशन की वजह से होता है, बट मोस्ट कॉमनली ये जो है बच्चों में देखा जाता है। ना बच्चों की अगर बात करें तो ओवरऑल अगर हम परसेंटेज की बात करें जनरल पॉपुलेशन में, तो जनरल पॉपुलेशन में इसका इंसिडेंस 0.7% तक होता है।
1: ठीक है,
2: मतलब अगर हम 1000 बच्चे लें तो किसी एक जो है 7 बच्चों को ये प्रॉब्लम मिलेगी। अब ये उनमें से भी, उन 7 बच्चों में से भी जो है अगर हम ऐसे 700 बच्चे लें तो किसी एक को सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम होती है। सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम से मतलब क्या है कि जिससे बच्चे का

0: बन हो जाता है। तो अब इसके काफी सारे कारण होते हैं कि जन्म से कोई हड्डी जो है वो टेढ़ी मेढ़ी बनी है जिसकी वजह से टेढ़ापन है, या मांसपेशियां ठीक ढंग से काम नहीं कर रही हैं, एक साइड की ज्यादा काम करती हैं एक साइड की कम काम करती हैं तो उसकी वजह से स्पाइन में टेढ़ापन आ जाता है, या कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जेनेटिक बीमारियां ऐसी होती हैं जिनसे कि बैलेंस नहीं बनता है तो स्पाइन का टेढ़ापन शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे कारण हैं इसके, स्पेशली अगर ये छोटे बच्चों में हो जाता है तो बहुत ज्यादा चिंता की जनक बात है, क्योंकि उससे लंग्स की डेवलपमेंट भी नहीं होती है, जो शरीर के वाइटल्स ऑर्गन्स है स्पाइन जो है सपोर्ट देता है सारी मसल्स को, तो वो सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो खाली स्पाइन से रिलेटेड नहीं, ये हार्ट को भी लंग्स को भी इफेक्ट कर सकता है, स्पेशली अगर बच्चों में है तो।
1: तो श्रोताओं, जैसे आपने हमारे विषय को जाना और विषय की गंभीरता से आप सभी अब परिचित हैं कि कितना जरूरी है इस बारे में जानकारी रखना कि अगर आपके किसी परिचित को ऐसी कोई समस्या है और आप नहीं ध्यान दे रहे हैं कहीं ये बढ़ ना जाए। स्पाइनल डिफॉर्मिटीज पर बात करेंगे, इसके क्या टाइप हो सकते हैं, कॉसेस और ट्रीटमेंट, सभी कुछ इस प्रोग्राम में। आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो से कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।

0: श्रोता हूँ, कभी कभी तो जज्बा भी हमारा पूरा होता है लेकिन हमारी शारीरिक समस्याएं हमें इस तरह से घेर लेती हैं कि हम चाहते हुए भी किसी काम को नहीं कर पाते, है ना। आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप अपनी इस समस्या को हमें जरूर लिख भेजें। हम बात कर रहे हैं आज रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम के माध्यम से स्पाइनल डेफोर्मिटीज के बारे में, क्या टाइप्स, कॉसेस और ट्रीटमेंट हो सकते हैं, ये हमारा आज का विषय है। हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर भावुक गर्ग हैं। सर, पहले क्योंकि हमारा आज का टॉपिक ही है तो हम जो ये हमारा स्पाइनल स्ट्रक्चर है, इसकी जो संरचना है और इसमें क्या कर्व्स हैं, कहाँ प्रॉब्लम्स आती है, इस टॉपिक को आपसे जानना चाहेंगे।
1: देखिए, स्पाइन को अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो चार हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो नेक वाला रीजन हो गया, उसके बाद हमारा चेस्ट वाला रीजन हो गया, उसके बाद नीचे जो कमर वाला रीजन है वो हो गया, और एक नीचे सैक्रल रीजन जिसको हम बोलते हैं वो हो गया। तो ये अगर आप देखें, इसको अगर हम सामने से देखें तो पूरा स्पाइन स्ट्रेट दिखता है नॉर्मली, और अगर हम इसको साइड से देखें तो जो गर्दन के अंदर है ये उल्टा सी बनाता है, फिर चेस्ट वाले रीजन में ये उल्टा सी बनाता है, फिर लंबर रीजन में, कमर वाले रीजन में अगेन से ये सी बनाता है, और फिर अगेन सैक्रल नीचे की जब टेल बोन वाला जो रीजन है उसमें फिर से सी बनाता है। तो ये नॉर्मल एंगुलेशन होते हैं, चार कर्व होते हैं स्पाइन के अंदर, और इनकी यूजुअली जो वैल्यू है वो कुछ वैल्यू होती है इस कर्व की, अगर ये एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लमेटिक होता है। तो यूजुअली जैसे सर्वाइकल स्पाइन में अगर हम गर्दन की बात करें तो 20 से 30 डिग्री का नॉर्मल कर्व होता है, चेस्ट की बात करें तो 40 से 60 डिग्री तक नॉर्मल होता है, कमर में बात करें तो अगेन 40 से 60 डिग्री तक नॉर्मल होता है। तो ये चीजें वैल्यूज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है
0: जी। सर, आप बता रहे थे कि शुरुआती समय में बच्चों में ये बीमारी होती है और समय पर पता चल जाए तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा इलाज किया जा सकता है। तो क्या इससे रिलेटेड क्या हमें ऐसी कुछ अवेयरनेस की जरूरत है कि हम स्कूलों में या फिर बच्चे स्कूल जा रहे हैं या पेरेंट्स भी उस वहां अपनी भूमिका निभाएं, वहीं अगर वहां पहचान हो जाए इस प्रॉब्लम की, स्पाइनल डेफोर्मिटीज की, तो जल्दी उसको पकड़कर इलाज के लिए ठीक किया जा सकता है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक्चुअली जो प्रॉब्लम है, जो स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम है, ये यंग लड़कियों में ज्यादा कॉमन होती है। अगर हम रेशियो की बात करें तो 7:1 का रेशियो है कि 7 लड़कियों और 1 लड़के को ये प्रॉब्लम होती है। और चूंकि लड़कियां हैं, इंडियन जो हमारा कल्चर है वो थोड़ा सा ज्यादा कपड़े पहनने का है उस तरीके से, तो ये यूजली पता भी लेट चलता है। जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर ट्रीटमेंट भी फिर काफी जो है उस हिसाब से चेंज हो जाता है, इसको हम नेग्लेक्टेड स्कोलियोसिस बोलते हैं। तो यंग लड़कियों में इसका पता लगाना जो है, अगर जल्दी पता चल जाए तो ट्रीटमेंट भी ईजी हो जाता है और अच्छा भी हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग, हमारी सोसाइटी ने भी जो है वो स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू किए हैं, जिसमें कि हम लोग स्कूल जाते हैं और बच्चों के शोल्डर्स वगैरह देखते हैं, शोल्डर्स पे लेवल पे है कि नहीं है, कूले सेम लेवल पे है कि नहीं है, कोई चेस्ट जो है, छाती जो है वो पीछे से उठी तो नहीं हुई है एक तरीके से। तो ये जस्ट सिंपल देखने से ही हमें समझ में आ जाता है कि इसको प्रॉब्लम है कि नहीं है, और फिर अगर उसको हम प्रॉब्लम सस्पेक्ट करते हैं तो फिर उसको हम एक्सरे कराते हैं और एक्सरे में ये डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है कि उसको, बच्चे को जो है वो स्पाइनल डिफॉर्मिटी है कि नहीं है।
0: जी सर, ये जो आपने कुछ बिंदु बताए कि हाँ इस तरह से आप जज करते हैं, तो पेरेंट्स को भी थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत है कि वो भी अपने बच्चे में चलते फिरते या उठते बैठते समय ये देखें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अगर उनको लगता है कि उनके शोल्डर्स बच्चों के सेम लेवल पे नहीं है, या गर्दन एक तरफ झुका हुआ है, या चलते हुए पैर जो है वो एक तरफ ज्यादा पड़ता है, तो ये सब चीजें सिग्नल हो सकते हैं कि बच्चे को स्पाइनल डिफॉर्मिटी हो सकती है, उसको वो कराना चाहिए। इसीलिए जैसे इंडिया में एक और चीज है कि टीबी बहुत कॉमन है, तो बच्चों में टीबी अगर हो जाता है तो जो है बोन घिस खराब हो जाती है, तो बच्चों में भी कुबड़ निकल आता है। तो टीबी भी जो है वो इंडिया में एक बहुत बड़ा कॉमन कॉज है। तो अगर किसी को, बच्चे को टीबी की शिकायत है तो उसको भी रेगुलर फॉलोअप जब तक कि वो बड़ा नहीं हो जाता बहुत जरूरी है, क्योंकि वो डिफॉर्मिटी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है।
0: जी सर, आपने एक अनुमान बताया कि 7:1, मतलब अगर 7 है तो और 1 लड़के को होती है, लेकिन ये तो आपने बताया कि बचपन से ही होता है, लेकिन हम तो मानकर चलते हैं कि महिलाओं में आगे चलकर जब वो गर्भावस्था के बाद की एक सिचुएशन आती है वहां जाके उन्हें स्पाइनल से जुड़ी प्रॉब्लम ज्यादा आने लग जाती हैं, लेकिन ये तो बहुत शुरुआती दौर से ही होना।
1: ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो हम फीमेल्स में, नॉर्मल फीमेल्स में बात कर रहे हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होता है। जो उनको लेटरल डिफॉर्मिटीज है वो ऑस्टियोपोरोसिस चूंकि फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होता है इसीलिए उनमें आती है। वो प्रॉब्लम्स अलग तरीके की डिफॉर्मिटीज होती है, डिफॉर्मिटीज अगेन वो भी डिफॉर्मिटीज है, बट ये जो है मैं डिफॉर्मिटीज की बात कर रहा हूँ ये जन्म से जो शुरू होती हैं या यंग एज ग्रुप में होती है। जो ऑस्टियोपोरोसिस वाली हैं वो फीमेल्स में विटामिन डी की कमी की वजह से और जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी वजह से जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, उनमें फ्रैक्चर होने की वजह से स्पाइन झुकता हुआ चला जाता है। तो जो स्पाइन आगे झुकता हुआ चला जाता है उससे फिर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है।
0: तो दोनों अलग अलग चीज़ें। आपसे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहेंगे कि महिलाओं में ये बहुत जल्दी से हो जाता है और ये स्पाइनल डेफोर्मिटीज का ही एक रूप है, तो ऐसे में शुरुआत से क्या करना चाहिए जिससे कि हम इस समस्या से ना ही ग्रसित हों।
1: देखिए, ऐसा है कि 30 से 35

0: ऑस्टियोपोरोसिस लेट आएगा।
1: सर एक क्योंकि आपने लक्षण बताए कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों में देखें तो उनके चलने को लेकर, उनके गर्दन के झुकाव को लेकर भी वो पहचान करें, कुछ और लक्षण या सिम्टम्स हो सकते हैं जिससे कि हम स्पाइनल डिफॉर्मिटीज को पहचान कर लें?
0: बेसिक तो यही जो मैंने आपको बताया, यही प्रॉब्लम है। लेकिन इसके अलावा अगर बच्चे को सांस लेने में भी दिक्कत है और थोड़ा टेढ़ापन भी दिखता है स्पाइन में, तो ये भी एक साइन हो सकता है। इसके अलावा अगर पैरों में कमजोरी आ रही है, वीकनेस आ रही है, सेंसेशन में प्रॉब्लम है, तो भी ये हिडन साइंस हो सकते हैं कि बच्चे को जो है स्पाइन में प्रॉब्लम्स है।
1: एक प्रश्न हमारे पास आया है हमारे लिसनर का, ये मनोहर लाल गांधी जी हैं चाणक्य चौक गाजियाबाद से, जानना चाहते हैं कि रीढ़ की हड्डी 50 प्लस के बाद, 50 प्लस के बाद झुकने में, बैठते उठते समय दर्द होना, चलते समय परेशानी होना, इसका क्या समाधान है? क्या रीढ़ की हड्डी से दिमाग का सीधा कनेक्शन है, कॉन्टेक्ट है?
0: रीढ़ की हड्डी का दिमाग से सीधा कॉन्टेक्ट है और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो दिमाग से ही, ब्रेन से ही आती है, नर्व्स का कंटिन्यूएशन है। जो ये प्रॉब्लम बता रहे हैं कि झुकना और इस 50 साल के बाद में, उसके तो काफी सारे कारण हो सकते हैं। एज रिलेटेड चेंजेस हो सकते हैं, अंदर नर्व्स के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, नर्व दब भी रही होती है, तो वो काफी सारे कारण हो सकते हैं। वो तो अगर ऐसा हो रहा है तो फिर इनको बेहतर है कि एक डॉक्टर के पास जाके अपना पूरा इवैल्यूएशन कराना चाहिए और उसके लिए एक्सरेज भी और जरूरत पड़ी तो एमआरआई भी फिर करा के उसके हिसाब से इलाज किया जाता है।
1: श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 के माध्यम से कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। हम बात कर रहे हैं स्पाइनल डेफोर्मिटीज के बारे में, टाइप्स, कॉसेस एंड ट्रीटमेंट डॉक्टर भावुक गर्ग से। एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा कनेक्ट होते हैं, तब तक आपके प्रश्नों का मैं इंतजार करूंगी।
2: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए,
3: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
2: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
3: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजें healthairdelhi@gmail.com पर।
1: एक बार पुनः मैं सृजन राजपूत आपका स्वागत करती हूं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। हम बात कर रहे हैं आज स्पाइनल डेफोर्मिटीज के बारे में, रीढ़ की हड्डी में क्या विकार हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होता है। और कहीं ना कहीं डॉक्टर बता रहे थे कि लाइफस्टाइल हमारा आजकल का ऐसा हो गया है कि हम ज्यादा ऐसी डेफोर्मिटीज से घिर चुके हैं, चाहे अब देख लीजिए हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है या फिर हमने एक्टिविटीज कम कर दी है। एग्जैक्टली क्या हमने कर लिया है अपने लाइफस्टाइल के साथ इस समय कि हम इतनी डेफोर्मिटीज से घिर चुके हैं? सर
0: देखिए, जो कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज हैं, आजकल पॉल्यूशन बहुत है जिसका हमें नहीं मालूम है, तो उसका भी जो है फर्क पड़ता ही है प्रेगनेंसी में और उन सब चीजों के, जो ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। एग्जैक्ट कारण तो पॉइंट आउट करना मुश्किल है, बट ये सब पॉल्यूशन है, दवाइयां हैं, लेट ऑन जो मैरिजेस हैं, वो सब भी कहीं ना कहीं से इस सब के लिए जिम्मेवार हैं। दूसरा, जो आगे चल के जैसे हमारी पॉस्चर है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जैसे कंप्यूटर पे काम करना बढ़ता जा रहा है, कंप्यूटर वाले प्रोफेशनल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो चेयर पे बैठने का पॉस्चर गलत है हमारा, टीवी देखने का पॉस्चर गलत है, मोबाइल फोन्स हैं जिनको हम रेगुलरली एक तरफ झुक के यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे स्पाइन को अफेक्ट करती हैं और उसकी वजह से जो है पॉस्चर में चेंजेस आते हैं और अल्टीमेटली डिजनरेशन और वो सब चीजें लेके जो है स्पाइन को टेढ़ा मेढ़ा कर देती हैं।
1: जी सर, क्या ये जो डिफॉर्मिटीज होती हैं स्पाइनल डिफॉर्मिटीज, ये क्योरेबल हैं? और क्या इसकी स्टार्टिंग से अगर बात करें, अगर ये क्योरेबल है तो क्या बिल्कुल फर्स्टली हम सर्जरी की तरफ आ जाते हैं या फिर पहले उसे देखा जाता है, ऑब्जर्व करते हैं कुछ फिजियोथेरेपी, या फिर कैसे उसको हम आगे बढ़ने से रोकते हैं अगर ये प्रॉब्लम हमें हो चुकी है, कोई डिफॉर्मिटीज हमसे कनेक्टेड है?
0: स्पाइनल डिफॉर्मिटीज की ट्रीटमेंट बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है और ट्रीटमेंट ये क्योरेबल है, ऐसा नहीं है कि क्योरेबल नहीं है। सबसे पहले जैसे हमारा ये भी देखते हैं कि कितना कर्व है, कितना डिग्री का एंगल है, अगर जरूर से एक फिजियोलॉजिकल रेंज में अगर ये है तो उसको फिर हमारा मेन एम ही रहता है इसको आगे बढ़ने से रोका जाए। तो उसके लिए हम लोग बहुत सारी एक्सरसाइजेस कराते हैं, स्पेशल एक्सरसाइजेस हैं, ब्रेसेस हम देते हैं बच्चों को, ब्रेसेस बनके उसको बढ़ने से रोक सकते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि रेगुलर फॉलोअप करें, हर 6 महीने में आके हमें दिखाएं, हम देखते हैं कि वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट में चेंजेस करते हैं। ब्रेसेस भी कई तरीके के होते हैं, आजकल हम लोग 3D प्रिंटेड ब्रेसेस भी यूज करते हैं, ये पेशेंट के मेजरमेंट के हिसाब से जो है उसको स्पेशल तरीके के ब्रेसेस देते हैं। फिर इसके अलावा सर्जरीज होती हैं, सर्जरीज भी कई तरीके की सर्जरीज हैं, छोटा बच्चा है तो उसमें चूंकि हमें ग्रोथ भी करनी है वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए स्पेशल तरह की सर्जरीज होती हैं ताकि ग्रोथ भी होती रहे, और अगर बड़ा है तो फिर उसमें अलग तरीके से होते हैं कि उसमें स्क्रू रॉड लगा के जो है उसको फिक्स किया जाता है। तो एज के ऊपर, कॉज के ऊपर और प्रेजेंटेशन के ऊपर कितनी सिवियर डिफॉर्मिटीज, इसके हिसाब से इसके अलग अलग तरीके के इलाज होते हैं।
1: जी सर, क्या छोटी उम्र में अगर ये कोई डिफॉर्मिटीज है किसी बच्चे में तो उसमें ऐसी समस्या आगे थोड़ा कि हाइट नहीं बढ़ रही है या फिर अब उसको उठने बैठने में भी प्रॉब्लम होने लग गई, ये जल्दी देखने में मिलता है?
0: जी बिल्कुल, ये जितना देखिए स्पाइन अगर डिफॉर्मिटी

0: है किसी के अंदर तो ऑब्वियसली उसके स्पाइन पे अबनॉर्मल प्रेशर्स पड़ रहे हैं, तो सारी चीजें इफेक्ट होते हैं। 10 साल से उम्र में अगर बच्चा छोटा है तो उसके लंग्स और हार्ट की डेवलपमेंट पे भी काफी इफेक्ट पड़ते हैं। स्पेशली अगर 10 साल से छोटे बच्चे होते हैं तो उसमें हमें और भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, जैसे कि उनकी किडनीज की भी प्रॉब्लम होती है, उनके हार्ट में भी प्रॉब्लम्स मिलती है, हमें लंग्स में भी प्रॉब्लम मिलती है, तो सारे टेस्ट भी जो है कराना चाहिए।
1: बिल्कुल श्रोताओं, जिस तरह आप जान पा रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी का जो जुड़ाव है वो हमारे पूरे शरीर में एक ऐसा मेरुदंड का ये जो जुड़ाव है जो हमारे पूरे शरीर को चलने फिरने में, उठने बैठने में और हमारी पूरी लाइफस्टाइल को अफेक्ट कर सकता है। वहीं डॉक्टर बता रहे हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो आपके कंधे में या सर में दर्द कर रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके लंग्स को भी अफेक्ट कर रहा है, आपकी किडनी को भी अफेक्ट कर रहा है। और फिर अगर बच्चों में ऐसी समस्या आ गई है और नहीं उसको टाइम पर जज किया गया, नहीं रोका गया, तो आगे चल के उनकी हाइट बढ़ने से रिलेटेड और भी समस्याएं हो सकती हैं। एक प्रश्न हमारे पास आया है, ये मिस्टर सिंह है सुभाष नगर से, ये जानना चाहते हैं कि जो ये रीढ़ की हड्डी में अगर ज्यादा प्रॉब्लम है स्क्रीन टाइम के चलते तो इसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं, क्या रीजंस और हैं ऐसे?
0: तो जैसे मैंने बताया, पॉस्चर को अगर आप करेक्ट करेंगे तो उससे काफी फर्क पड़ता है। रेगुलर स्पाइन की एक्सरसाइजेस, आपके एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस आप करें, पॉस्चर ठीक रखें। चेयर पे जैसे अगर आप काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो चेयर आपकी इतनी हाइट पे हो कि लेग्स जो फीट हैं वो आपके ग्राउंड के ऊपर पूरी तरह से रखे हुए हों, ना ज्यादा ऊंचे हों ज्यादा नीचे हो। इसके अलावा जो आपको एल्बोज जो है वो आपके एल्बो रेस्ट होने चाहिए साइड में, टेबल चेयर के साइड में आपके एल्बोज जो है वो टेबल पे रेस्ट करनी चाहिए। जो कीबोर्ड पे अगर आप काम कर रहे हैं तो कीबोर्ड पे सिर्फ रिस्ट जो है रेस्ट होनी चाहिए, सिर्फ फिंगर्स मूव करनी चाहिए। स्क्रीन जो है वो आपके सामने आईज के लेवल पे होनी चाहिए, जो उसका अपर बॉर्डर है स्क्रीन का वो आपके आईज के लेवल पे होना चाहिए और इतने डिस्टेंस पे होनी चाहिए स्क्रीन कि वो आपकी आईज के ऊपर 30 डिग्री का एंगल बनाए। तो ये सब चीजें बेसिक हैं। हर एक घंटे के बाद हम लोग बोलते हैं, जिनके 6-7 घंटे की डेली की सेटिंग होती है उनको हम ये बोलते हैं कि आप 50 मिनट्स एन आर का रूल फॉलो करिए। दैट मीन्स कि अगर आप 50 मिनट बैठे हुए हैं तो 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, खड़े होकर आ जाइए, वॉक करके आ जाइए, घूम के आ जाइए। या जिनका फील्ड वर्क है जो घंटे घंटे खड़े रहते हैं तो उनको हम कहते हैं कि आप 50 मिनट के बाद 10 मिनट का बैठने का ब्रेक ले लीजिए। वो चीजें सब जरूरी हैं।
1: जिस तरह डॉक्टर बता रहे हैं कि आपको अपना काम तो करना जरूरी है, चाहे आप फिजिकल वर्क करते हो या मेंटल वर्क करते हो, तो मेंटल वर्क अगर आप करते हैं तो वही 10 मिनट्स का ब्रेक आप अपने उठने के लिए लीजिए, और अगर आप फिजिकल वर्क करते हैं तो 10 मिनट्स का ब्रेक आप अपने बैठने के लिए लीजिए। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम के माध्यम से रीढ़ की हड्डी से जुड़े विकारों के बारे में डॉक्टर भावुक गर्ग से। एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर आकाशवाणी रेनबो 102.6 के माध्यम से। मैं सृजन आपके साथ हूं और हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर भावुक गर्ग। डॉक्टर भावुक गर्ग से आज हम बात कर रहे हैं रीढ़ की हड्डी से जुड़े विकारों के बारे में, उनके प्रकार, कारण और इलाज। ये हमारा आज का विषय, स्पाइनल डेफॉर्मिटीज। हमारे साथ एक लिसनर जुड़े हैं, ये हैं रघुविंद्र सिंह जी सुभाष नगर नई दिल्ली से। डॉक्टर, ये जानना चाहते हैं कि रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होने पर बेल्ट का क्या रोल है, वो कितना रिलीवर हो सकता है।
2: देखिए, बेल्ट जो है कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, पहली बात तो ये। अगर बेल्ट आपको अपने आप वैसे भी नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि बेल्ट अगर आप ऐसे यूज कर रहे हैं, रेगुलर यूज कर रहे हैं, तो इसके आपके जो मसल्स हैं वो वीक होती चली जाती हैं और फिर एक विशेष सर्कल बन जाता है कि आप बेल्ट पहनते रहेंगे, मसल्स कमजोर होती रहेंगी, रिकवरी होगी नहीं। तो बेल्ट के बहुत ही स्पेसिफिक यूज होते हैं और यूजली इसको हम शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हैं कि कोई ऐसी चीज है, जैसे सपोज कोई इन्फेक्शन है जिसको ठीक होने के लिए हम दवाई दे रहे हैं और वी हम होप करते हैं कि वो एक दो महीने में ठीक हो जाएगा, तब तक पेन रिलीफ के लिए हम लोग बेल्ट दे देते हैं। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसे परमानेंट ट्रीटमेंट, तो वो नहीं, वो ठीक नहीं है।
1: और रोहित जी जानना चाहते हैं, सर परमानंद कॉलोनी दिल्ली से लिखते हैं, सुबह उठकर ऐसा क्या किया जाए कि पूरा दिन कमर में दर्द हो ही ना। एकदम से झटका आ जाने पर भी कमर में दर्द हो जाता है, कई बार ज्यादा वजन उठाने पर भी दर्द हो जाता है, तो ये क्या करें?
2: देखिए, जैसे आप जान की सेफ्टी करते हैं ना, 24 घंटे जान हर चीज में लगता है कि जान का खतरे वाला कोई काम नहीं करते, तो ऐसे आपकी कमर में भी जो है, अब ऐसा नहीं कि आप सुबह ही आपकी इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग विच एवर यू डू 24 आवर्स इज इंपॉर्टेंट। आप कैसे उठते हैं, बिस्तर से उठने का जो तरीका है वो कैसे आप उठते हैं, पहले पैर नीचे रख के उठते हैं, झटके के साथ उठते हैं, खाना कैसे खाते हैं, नहाते हुए आप मग के लिए बार बार नीचे झुक रहे हैं या शावर में नहा रहे हैं, वो सब चीजें, सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं जो बैक पेन की केयर से रिलेटेड हैं। जैसे सपोज आप इनफैक्ट जो बिस्तर में आप सोते हैं वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप सोने के टाइम में जो आपकी मैट्रेस है वो ठीक है कि नहीं है। अगर मैट्रेस खराब है, पुरानी है, इसके स्प्रिंग आपको फील होते हैं, तो ऑब्वियसली वो आपकी कमर को जो है वो डैमेज करेगा। तो मैट्रेस चूज करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लोगों को पता भी नहीं होता है। हर आदमी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि हार्ड बेड पे सोएं कि सॉफ्ट बेड पे सोएं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जो है जब भी आप मैट्रेस खरीदने जाएं, आप जिसको खरीदनी है, जिसके लिए चाहिए, वो आदमी उस पर लेटे, आप अपने साथ किसी फ्रेंड को लेके जाएं और उससे पूछें कि अपना जो हाथ है वो आपकी कमर के नीचे पास करने की कोशिश करे। अगर वो बहुत ईजिली चला जा रहा है हाथ, तो इसका मतलब वो जरूरत से ज्यादा हार्ड है वो बिस्तर आपके लिए। अगर वो बिल्कुल भी नहीं जा पा रहा है, तो इसका मतलब वो जरूरत से ज्यादा सॉफ्ट है आपके लिए। और अगर विद स्लाइट डिफिकल्टी आप हल्का सा विगल करके आप हाथ को ले जाते हैं, तो वो आपके लिए आइडियल मैट्रेस है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए आइडियल मैट्रेस है वो भी आप चूज करें। इसके अलावा बैठने का पॉस्चर, एक्सरसाइजेस, रेगुलर एक्सरसाइजेस, वो सब चीजें जो है, डाइट आपकी जो है, वो सारी चीजें, सब चीजें इंपॉर्टेंट है।
1: का सर क्या बैलेंस बनाए, मतलब अगर विटामिन अगर बात करें तो क्या उनकी इंटेक्स किस प्रकार से डिवाइड करें?
2: देखिए, अगर आप बैलेंस फूड खाते हैं, बैलेंस फूड मतलब कि आपके प्रोटीन्स का, फैट का और कार्बोहाइड्रेट का बैलेंस ठीक है बॉडी के अंदर, तो मतलब खाने में, तो फिर वैसे भी वो सब कुछ ठीक है। विटामिन वगैरह तो आप फ्रूट्स वगैरह के रेगुलर इंटेक, वो सब आपको रेगुलर करना चाहिए। नॉर्मली हम ये कहते हैं आज की तारीख में कि प्रोटीन्स का इंटेक जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, और उसी के हिसाब से अगर आप चलेंगे, आपका वेट कंट्रोल में है, आपका बॉडी जो बीएमआई इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं, बीएमआई आपका कंट्रोल में लेस देन 25 है, तो ये सब चीजें जो है लॉन्ग वे जाएंगी आपकी बैक की केयर करने में।
1: जी, एक प्रश्न हमारे पास आया है सर प्रकाश जी का सीतामणी बिहार से। ये जानना चाहते हैं कि ठंड के दिनों में रीढ़ की हड्डी और पीठ में दर्द होता है, ज्यादा ठंडा पानी पीने पर भी इन्हें दर्द होता है, इसका क्या समाधान है? यहाँ पर एक बात मैं और जानना चाहूंगी आपसे कि सिकाई का चुनाव कैसे करें, कि हमें अगर पीठ में दर्द है, हमारे स्पाइनल में कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें ठंडी सिकाई करनी है या गर्म सिकाई करनी है?
2: देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि ठंडा या गर्म जो है, ये कॉमन जो डिक्टम हम लोग यूज करते हैं अपनी प्रैक्टिस में वही है कि फर्स्ट 24 आवर्स जो पेन होता है या इंजरी होती है उसमें जो बर्फ का या ठंडी सिकाई का रोल काफी अच्छा रहता है। बट जब चोट पुरानी हो जाए या फिर जो है बीमारी पुरानी है, तो उसमें हॉट फर्मेंटेशन या हॉट फर्मेंटेशन इज बेटर देन दी कोल्ड फर्मेंटेशन, यूजली ये डिक्टम फॉलो करते हैं। अब समझने की बात ये भी है कि जो कमर का दर्द है वो जरूरी नहीं है कि कमर से ही आए, एसिडिटी जो होती है, गैस्ट्रिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी बैक पेन कर सकती हैं, काफी कॉमन होता है। तो जो ठंडे पानी से बता रहे हैं कि पीने से दर्द हो जाता है, तो हो सकता है कि इनको एसिडिटी होती हो जो कि वो बैक पेन करती हो। इसके अलावा जो ठंड में जो पेन बढ़ते हैं, सारे तरह के जो पेन होते हैं, ऑर्थोपेडिक रिलेटेड पेन्स होते हैं, वो ठंड के बढ़ जाते हैं, दैट इज नॉर्मल फिनोमेना, क्योंकि मसल्स की मूवमेंट नहीं होती है। आप जो है ठंड में सारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, खून की नसें, तो वो स्टिफनेस आ जाती है वो जोड़ के अंदर, और अगर उसमें ऑलरेडी पहले से थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो फिर मसल्स को मूव करने में पेन बढ़ जाता है। इसके अलावा जो इनको यूरिक एसिड का इशू हो होता है उनको भी जो है ठंड में ये सब प्रॉब्लम पड़ जाती है।
1: जी सर, क्योंकि अभी कमर में दर्द या हम ऐसे सब बोलते हैं कि दर्द है कमर में या अभी ऐसे उठा नहीं गया झुका नहीं गया, तो ये कब चिंताजनक सिचुएशन में आ जाता है कि अब ये स्पाइनल डिफॉर्मिटीज की तरफ पड़ रहा है, कब ये अलार्म हमें बज जाना चाहिए?
2: देखिए जो बैक पेन है ना वो सेकेंड मोस्ट कॉमन सिम्टम है, कॉमन सिम्टम है। सबसे कॉमन है कोल्ड, कॉमन कोल्ड जिसको जुकाम बोलते हैं, जो बैक पेन है दैट इज द सेकंड मोस्ट कॉमन सिम्टम, हर एक आदमी को अपनी लाइफ टाइम में होता ही होता है, कभी ना कभी जरूर होता है। तो ये बड़ा आपका वैलिड क्वेश्चन है कि कब चिंताजनक है ये, क्या जैसे एक दिन का बैक पेन हो हमें डॉक्टर के पास भागना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये कि एनी बैक पेन विच इज मोर देन 4 वीक्स, जो 4 हफ्ते से ज्यादा का दर्द है वो चिंताजनक है। 4 हफ्ते से ज्यादा कोई भी बैक पेन है तो आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके अलावा अगर 4 हफ्ते से कम का बैक पेन है और उसमें कुछ रेड फ्लैग्स हैं, रेड फ्लैग्स मतलब कि कुछ है सिम्टम्स जो कि फौरन चिंता की तरफ कहते हैं, पहली बात है चोट लगने के बाद आपको दर्द शुरू हुआ है एकदम से, वो चिंताजनक बात हो सकती है, कोई फ्रैक्चर हो सकता है, तो फौरन जाकर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बुखार आ रहा है मरीज को, बुखार के साथ बैक पेन आ रहा है, वजन कम हो रहा है, 18 साल से कम की उम्र का बच्चा है उसको बैक पेन हो रहा है, 60 साल से ऊपर का आदमी है उसको बैक पेन हो रहा है, तो ये सब चीजें जो है, या उसके अंदर जो है आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है उसके बाद टीबी की शिकायत है उसके साथ में बैक पेन हो रहा है, तो ये सब चीजें रेड फ्लैग हैं बेसिकली, और ये किसी सीरियस बीमारी की तरफ भी पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, फिर 4 हफ्ते भी वेट करने की जरूरत नहीं है।
1: ओके सर, पेन किलर, क्योंकि जब भी दर्द होता है तो जनरली काम के लिए उठना है तो हम एक ऑप्शन चूज कर लेते हैं कि पेन किलर लिया और उठकर खड़े हुए, तो इसको कैसे ले ना ले और कितनी फ्रिक्वेंसी में अगर हमने लेना स्टार्ट कर दिया है तो भी ये अलार्म बेल है?
2: देखिए अगर 2 या 3 दिन के बाद भी पेन किलर लेने पर भी आपको पेन ठीक नहीं हो रहा है तो आई विल सजेस्ट कि आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि पेन किलर जब ज्यादा लंबे टाइम तक अगर 4-5 दिन से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पेन किलर्स के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो वो बड़ी चिंताजनक बात है कि ये लोग लेते रहते हैं फिर उसके बाद से और बैक पेन तो शायद ठीक ना हो और किडनी विडनी के इश्यू जो है वो काफी शुरू हो जाते हैं।
1: श्रोताओं, आज रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं स्पाइनल डेफोर्मिटीज के बारे में, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी जो विकार समस्याएं हो सकती हैं और क्या इलाज हो सकता है इस पर भी आएंगे। डॉक्टर आपने उम्र का तो बताया, लेकिन अभी हम किसी भी उम्र में हैं, मान लीजिए हम यंगस्टर हैं या कुछ है, लेकिन हमारे साथ कोई दुर्घटना घट गई है, कोई एक्सीडेंट सिचुएशन है, वहां हमारे साथ कब ये स्पाइनल डिफॉर्मिटीज जो है हो सकती है उस पर भी बात करना चाहेंगे।
2: स्पाइनल डिफॉर्मिटीज ट्रॉमा के बाद भी हो सकती है, इनको हम पोस्ट ट्रोमेटिक स्पाइनल डिफॉर्मिटीज बोलते हैं। अगर स्पाइन के अंदर डैमेज हुआ है और उसको कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला है, आपके लिगामेंट्स डैमेज हो गए हैं, तो वो धीरे धीरे स्पाइन टेढ़ा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो जो बॉडी का लोड है वो नहीं ले पा रहा है, तो वो धीरे धीरे टेढ़ापन होकर वो परमानेंटली भी फिक्स हो जाता है, फिर आपको फिर वो सर्जरी से ही यूजली ठीक किया जा सकता है। तो ये भी चिंताजनक बात है कि अगर आपका बैक पेन है, ट्रॉमा मैंने जैसे बताया कि चोट लगी और बैक पेन है, तो फिर फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, नहीं तो फिर लेट जो है वो डिफॉर्मिटी के साथ ही फिर दिक्कत आती है।
1: जी श्रोताओं, जैसे डॉक्टर बता रहे हैं कुछ सिचुएशंस तो बिल्कुल ऐसी हैं जिनमें कि आपको एकदम से डॉक्टर के पास जाना है और अपना ट्रीटमेंट के लिए आपको डायग्नोस भी करवाना है, स्टार्ट भी कराना है, लेकिन वहीं डॉक्टर ने ये भी बताया कि जनरल आपको आपको कमर में दर्द है तो ही आप ये ना मान लें कि आप किसी डिफॉर्मिटीज से कनेक्ट हो चुके हैं या आप से ग्रसित हैं। दोनों ही सिचुएशन में आपको ये जज करना है कि आप सीवियर हैं या कौन सी सिचुएशन है जहां आपको जरूरत है, तो वहां तो नजरअंदाज करना ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं स्पाइनल डेफोर्मिटीज के बारे में रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम के माध्यम से, और यहां पर एक और खूबसूरत म्यूजिकल ब्रेक जो कि डॉक्टर ने आपके लिए खास पसंद किया है।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: इस गाने से पहले मैंने डॉक्टर से जानना चाहा था कि डॉक्टर क्या खास वजह है इस गाने को चुनने की। तो डॉक्टर ने बताया कि हौले हौले से ही दर्द होता है, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं और फिर वो बड़ा बन जाता है। आकाशवाणी रेनबो 102.6 के माध्यम से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। हम आज बात कर रहे हैं स्पाइनल डेफोर्मिटीज के बारे में, टाइप्स, कॉसेज एंड ट्रीटमेंट, रीढ़ की हड्डी से जुड़े विकार, प्रकार, कारण और इलाज विषय पर। हमारे कुछ लिसनर्स हमसे न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए भी जुड़े हुए हैं और उनके प्रश्न भी हम तक आए हैं, जिनका मैं स्वागत करती हूं। हमारे साथ कौशिक चौधरी जी हैं, ये बारो विशा नियर भूटान बॉर्डर से हमें लिखते हैं कि सुबह कमर में सर ज्यादा दर्द होता है और एक साल से हो रहा है, और जब मैं दिन में 2 घंटे बाइक चला लेता हूं तो मुझे और भी ज्यादा जो मेरी कमर में दर्द है वो फील होता है।
2: देखिए, जो बैक पेन नॉर्मली जो ज्यादातर तरह के बैक पेन है वो शाम के समय बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो है वो आपकी एक्टिविटीज रिलेटेड, पॉस्चर रिलेटेड होते हैं, तो शाम को थकान हो जाती है तो उसकी वजह से बढ़ जाते हैं। जो ये मॉर्निंग टाइप के बैक पेन है ये एक अलग ही स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, जो कि गठिया की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, आर्थराइटिस की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। सो एनी बैक पेन इफ इट इज मोर देन 30 मिनट्स, अगर आधे घंटे से ज्यादा आपको सुबह के टाइम उठने के बाद दर्द रहता है तो फिर अगेन आपको डॉक्टर को देखना चाहिए, गठिया भी हो सकता है।
1: जी, ये सच में एक ऐसा आपने डॉक्टर आंसर किया है कि आपको यहाँ थोड़ा सा जागने की जरूरत है। अगर आप ये बहुत सीवियर सिचुएशन में आपको मॉर्निंग में ऐसे पेन्स हो रही हैं तो ये आपके अर्थराइटिस की ओर भी इशारा करते हैं। और ये एक और प्रश्न है हमारे पास कि ये जानना चाहते हैं कि रीढ़ की हड्डी का जो ये दर्द है, इसमें मेडिसिन काम करती है, एक्सरसाइज काम करती है या फिर सर्जरी ही करवानी पड़ती है।
2: देखिए, 90% जो केसेस हैं बैक पेन के वो तो सिंपल एक्सरसाइज से ही ठीक हो जाते हैं, दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ती है।
1: ठीक
2: है, जो बाकी 10% बचते हैं उनमें से 6-7% जो केसेस हैं वो रेगुलर थोड़े टाइम के लिए शॉर्ट टर्म मेडिसिन के थ्रू, फिजियोथेरेपी के थ्रू ठीक हो जाते हैं। कुछ केसेस में हमें जो है कुछ इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं, उसकी वजह से भी हो जाते हैं। सर्जरी तो सिर्फ 1% केसेस में रिक्वायर्ड होती है स्पाइन के अदर कॉजेस में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, और सर्जरी कराने के बाद भी एक्सरसाइज तो फिर भी आपको करनी ही करनी है।
1: ठीक है, और ये विश्वजीत जी हैं कोलकाता से, ये जानना चाहते हैं कि जब ये ज्यादा मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं तो इन्हें जो इनकी स्पाइन है वो दर्द करने लग जाती है।
2: देखिए, नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि हमारी बॉडी हमें खुद ही बता देती है कि कब आपको रुकना चाहिए, कब आपको जो है आपके लिए ठीक है। तो अगर बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि इतना चलने के बाद, सपोज आप 3 किलोमीटर चलने के बाद आपको बैक पेन होता है, तो उसको 2.5 कर दीजिए थोड़ा सा, और थोड़ा बैक की एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दीजिए, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे तो आई होप कि उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए।
1: जी, हम बात कर रहे हैं श्रोताओं स्पाइनल डेफोर्मिटीज के बारे में, रीढ़ की हड्डी से जुड़े क्या विकार हो सकते हैं, और जैसे कि डॉक्टर बता रही है कि जब आपकी बॉडी आपको कुछ सिग्नल देना तो उसे इग्नोर ना करे। ये दिव्या है, दिव्या मौर्य अमेठी से, ये जानना चाहती है कि जब ये ज्यादा पड़ती है, देर रात तक पड़ती है, तो इनकी गर्दन से लेकर कमर तक में दर्द हो जाता है, तो अब इन्हें क्या करना चाहिए।
2: ये कहीं ना कहीं पॉइंट आउट कर रहा है कि आपका पॉस्चर ठीक नहीं है, तो आप अपने पॉस्चर को ठीक रखिए। जो आपके टेबल चेयर पे बैठ के पड़िए, जो आपकी सपोर्ट होना चाहिए बैक में, जो चेयर है उसकी सपोर्ट जो है, अगर आप ज्यादा पड़ती हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको अच्छा सपोर्ट भी चाहिए, आपके बैक फ्रेंडली सपोर्ट होना चाहिए। और दूसरा, जैसे मैंने बताया कि 50 मिनट्स एन आर का रूल फॉलो करें, कि 50 मिनट के बाद जो है 10 मिनट का ब्रेक लें, पानी पी लें, उठ के खड़े होकर पढ़ लें, और थोड़ा सा चेंज जो है वो पॉस्चर में एवरी आर 5-10 मिनट का चेंज बहुत जरूरी है।
1: जी, यही प्रश्न हमारे एक और लिसनर का भी था, दीप्ति चंडीगढ़ से, और इन्होंने भी यही जानना चाहा था कि पढ़ाई के दौरान, एग्जाम्स के दौरान इन्हें स्वेलिंग भी हो जाती है दर्द की वजह से, तो ये भी अगेन पोस्चर पे अगर काम
2: अगर है। स्वेलिंग आपको आ रही है जो आपको दिख भी रही है, तो इसका मतलब ये कहीं कुछ और इश्यूज भी हो सकते हैं। आपको ब्लड टेस्ट आपके करा लेने चाहिए डॉक्टर से बात करके, और वो अपने किडनी और लिवर के टेस्ट भी आपको एक बार चेकअप करा लेना चाहिए।
1: जी, ओके। ये प्रश्न मोहम्मद इब्राहिम जी का है श्रीनगर से, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन बाय कॉमन पीपल व्हेन दे टेक द स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पर्सन टू हॉस्पिटल।
2: ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट सवाल है कि अगर किसी को आप कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें अगर आपको सस्पेक्टेड है कि ये इसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, तो उसको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना चाहिए। उसके लिए हम एक टेक्निक बोलते हैं लॉग रोलिंग, दैट मींस कि उसमें आदमी को ऐसे रोल करना चाहिए कि जैसे कि एक लकड़ी का जो पेड़ का लॉग होता है, जो पेड़ का तना है, बिल्कुल वैसे लॉग एक ही पोजिशन में वो होना चाहिए। तो 3 लोग जो है उसको मिलकर लॉग रोलिंग करते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल आस्पेक्ट है कि उसको उसकी ट्रेनिंग होती है, तो आई डोंट थिंक मैं रेडियो पे उसको समझा सकता हूं, लेकिन यह है कि वो 3 लोग मिलके जितना मिनिमम मूवमेंट पॉसिबल हो सके
1: जी
2: उतना करना चाहिए। दूसरी बात यह कि अगर उसने हेलमेट पहना हुआ है तो हेलमेट भी निकालने का भी एक तरीका होता है। अगर आप उसमें ट्रेन नहीं है तो अपने आप कोशिश नहीं करनी चाहिए हेलमेट निकालने की, क्योंकि उससे जो नेक में इंजरी है वो भी वर्सन हो सकती है।
1: जी बिल्कुल सर, ये तो बात हुई कुछ एक्सीडेंट्स की या फिर उम्र के बाद आपको हो रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ अगर ऐसी स्पाइनल डिफॉर्मिटीज हैं तो ये बिफोर बर्थ भी अल्ट्रासाउंड में अगर पता चल गई है तो इन पर कैसे काम करना चाहिए?
2: देखिए सबसे पहली बात तो यही है कि अगर इसकी जानकारी हो जाए तो इसके साथ यूजली जो ये बर्थ से रिलेटेड स्पाइनल डिफॉर्मिटीज होती हैं जो जन्म से होती हैं, वो खाली स्पाइनल डिफॉर्मिटीज अकेले नहीं होती, उनके साथ और भी हार्ट के भी इश्यूज होते हैं, किडनी के भी इश्यूज होते हैं। तो जो एक हम लेवल 2 स्कैन बोलते हैं प्रेगनेंसी के टाइम में, जो यूजली 16 से 18 हफ्ते की प्रेगनेंसी में किया जाता है, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उससे आपकी स्पाइन की पूरी स्ट्रक्चर्स वगैरह दिख जाती हैं, पहले से पता चल जाता है, और फिर डिपेंडिंग अपॉन कि वो चीज कितनी सिवियर है उसके हिसाब से प्रेगनेंसी को, कई बार इतना सिवियर अगर प्रॉब्लम है तो एक ऑप्शन मरीज को ये भी दिया जाता है कि टर्मिनेट कर दिया जाए प्रेगनेंसी को, ताकि लॉन्ग टर्म सफरिंग से अच्छा है कि उसको उसी में, तो पर वो डिपेंडिंग अपॉन कितनी सिवियरिटी है, फिर डॉक्टर की राय के हिसाब से, फिर पेशेंट्स के की फैमिली के हिसाब से राय लेके फिर उसका एक्चुअल डिसीजन लिया सकता है। कुछ होते हैं जिनका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल होता है तो फिर उसके हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं।
1: ओके डॉक्टर, एक और प्रश्न है, ये उसी हमारे लिसनर का है दीप्ति का, जिन्होंने कहा था कि वो पढ़ने के दौरान ड्यूरिंग एग्जाम इन्हें स्वेलिंग तक आ जाती है दर्द के चलते, और आपने इन्हें कहा कि इन्हें ब्लड टेस्ट जो है करवाने चाहिए, तो ये कुछ सजेशन मांग रही है कि कौन से ब्लड टेस्ट जिनसे कि ऐसी डिफॉर्मिटीज पता चल जाए।
2: नहीं देखिए, इसके लिए जरूरी है कि आप एक बार डॉक्टर से मिलें, स्वेलिंग दिखाएं उनको, क्योंकि हर तरह की स्वेलिंग भी कई तरीके की होती है और उनके अलग अलग कारण होते हैं, इसको लाइटली मत लें। अगर स्वेलिंग आती है तो आई विल सजेस्ट कि आप डॉक्टर को फौरन दिखाएं।
1: जी तो अब बात करेंगे डॉक्टर की, अगर हमें ये तो पता चल गया है कि अब हमें कोई ना कोई स्पाइनल डिफॉर्मिटीज है, तो हमारी क्या लाइफस्टाइल में हमें चेंज करने हैं, क्या डाइट में चेंज करने हैं, और फिर ट्रीटमेंट?
2: देखिए अगर स्पाइनल डिफॉर्मिटी स्ट्रक्चरल है जिसको जो है प्रॉब्लमेटिक है और डॉक्टर के हिसाब से आपको जो ट्रीटमेंट दिया गया है वो तो एक अलग हो गया। अगर किसी को नॉर्मल स्पाइन की कंडीशन है, जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं बैक पेन की, डिस्क है या कुछ है, तो उसमें आपका जो है नॉर्मल डाइट, वेट रिडक्शन आपका होना चाहिए, रेगुलर आपको एब्डोमेन की भी और स्पाइन की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, पोस्चर कंट्रोल करना चाहिए, वेट उठाते हुए ध्यान रखना है कि ज्यादा वेट ना उठाएं, अगर आप वेट उठाना है तो झुक के ना उठाएं, घुटने के बल बैठ के जमीन पर उसको उठाएं, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए वेट को जो है क्लोजेस्ट टू द बॉडी रखें, रादर देन दूर रखने के बॉडी के बिल्कुल पास रख के उसको चीज उठाएं। तो ये डेली है, जितना चीजों को आप पुश कर सकें वो बेटर है रादर देन पुल खींचने के, तो ये सब चीजें जो है थोड़ा लॉन्ग टर्म में हेल्प करती हैं।
1: जी और फाइनली डॉक्टर, आप कब किस मरीज को देखते हैं कि अब इसकी सिचुएशन ऐसी है, आपको जज करना है कि अब इसकी सिचुएशन ऐसी है कि हाँ इसको अब स्पाइनल सर्जरी देनी है हमें, और फिर इसका कितना लंबे मतलब कितने समय तक वो व्यक्ति सर्जरी के बाद जो है बेड रेस्ट पर रहेगा, कब उसको तैयार होना है और उसको आगे कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं?
2: देखिए नॉर्मली जो एब्सोल्यूट इंडिकेशन होती है सर्जरी की, अगर पैरों में कमजोरी आ रही है या लैट्रिन पेशाब का कंट्रोल नहीं आ रहा है तो ये तो एब्सोल्यूट इंडिकेशंस हैं कि इसमें हमें सर्जरी करनी ही करनी है।
1: ठीक है,
2: अगर ये सब नहीं है और पेन ही मेजर कंप्लेंट है, तो मैंने बताया कि पहले हम एक्सरसाइजेस से दवाइयों से कोशिश करते हैं, अगर उससे नहीं फर्क पड़ता तो इंजेक्शन से ट्राई करते हैं, और अगर फिर भी फर्क नहीं पड़ता तो फिर हम सर्जरी के लिए सोचते हैं। सर्जरी के कई टाइप्स होते हैं, इसी तरह से स्पाइनल डिफॉर्मिटीज की अगर बात करें तो उसमें अगर एंगल जो है वो यूजली 40-50 डिग्री से ज्यादा का हो जाता है तो भी फिर हम सर्जरी के लिए प्लानिंग करते हैं। सर्जरी भी कई तरीके की होती है, बट यूजली हमारा एम ये रहता है कि हम मरीज को जितना जल्दी से जल्दी हो सके खड़ा करके चला दें। नॉर्मली हम जो है स्पाइन के पेशेंट्स को सेम डे ही हम बिठा देते हैं सर्जरी के बाद, और हमारी कोशिश रहती है कि सेम डे नहीं तो अगले दिन सुबह सुबह तक वी मेक देम वॉक। तो दैट इज वेरी गुड फॉर देयर अर्ली रिकवरी ऑल्सो एंड फॉर देयर जनरल हेल्थ ऑल्सो। तो ये नोशन की सर्जरी के बाद बिस्तर में लेटना पड़ता है वो सब आज की तारीख में नहीं है। टॉयलेट तो सेम डे या नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक जो है दे शुड बी अलाउड के वो टॉयलेट वगैरह जा सकते हैं, और यूजली आजकल अगर सिंपल स्पाइन सर्जरी है तो यूजली उसका स्टे जो है, इनफैक्ट हम लोग डे केयर बेसिस पे भी ये सर्जरीज कर रहे हैं आजकल।
1: मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें सुन रहे हैं 102.6 से आकाशवाणी रेनबो के माध्यम से, और ये लिखते भी हैं और शायद जानना ही चाहते हैं कि रीढ़ की हड्डी हमने ज्यादा कार चला चला कर अपनी खराब कर ली, क्योंकि इन्हें भी इस दर्द की समस्या है।
2: देखिए अगर कार के सस्पेंशन ठीक नहीं है और आपकी पोस्चर अगेंस्ट बैठने का ठीक नहीं है और आप लॉन्ग ड्राइविंग करते हैं, तो मैंने वही बताया आपको कि आप अपने वही 50 मिनट्स एन आवर का रूल फॉलो करिए कि हर एक घंटे में आपने ड्राइविंग की है तो फिर गाड़ी के साइड में लगा के 5-10 मिनट ब्रेक ले लीजिए, बॉडी को स्ट्रेच कर लीजिए और कार के चारों तरफ राउंड लगा के फिर उसको ड्राइव करिए।
1: ओके डॉक्टर, यहाँ पर एक और प्रश्न है कि अगर आप स्पाइनल डेफॉर्मिटीज की बात करें तो आपको ऐसे में ऑर्थो पेडिक्स के पास जाना चाहिए या फिर आपको न्यूरो सर्जन के पास जाना चाहिए, कौन आपकी हेल्प कर सकता है?
2: देखिए मैं कहूंगा कि स्पाइन सर्जन के पास जाना चाहिए। स्पाइन सर्जन ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हो सकता है, न्यूरो सर्जन भी हो सकते हैं। कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें कि हम ऑर्थोपेडिक सर्जन न्यूरो सर्जन के साथ मिलकर कोशिश करते हैं, बट नॉर्मली जो लोग स्पाइन देखते हैं वो ट्रेनिंग दोनों तरफ से होती है और दोनों ही देखते हैं उसको।
1: जी, डॉक्टर का परिचय मैं आप सबसे एक बार पुनः कराना चाहूंगी। डॉक्टर भावुक गर्ग हैं हमारे साथ, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एम्स से। तो अगर आप किसी समस्या को लेकर अगर दोबारा कनेक्ट करें तो आप डॉक्टर से एम्स में भी मिल सकते हैं, क्योंकि एक लिस्नर हमारे साथ हैं और ये पूछ रही है कि डॉक्टर आपसे अगर मिलकर इलाज करवाना हो तो ये कहां मिले। बाकी रेडियो डॉक्टर के माध्यम से मुझे लगता है हमारे आज जितने भी लिसनर्स जुड़े और अपने प्रश्नों के माध्यम से जानने चाहे अपनी समस्या का हल, तो डॉक्टर ने बहुत बेहतरीन तरीके से उन्हें बताया कि किस तरह से आप अपने स्पाइनल डेफोर्मिटीज को लेकर अलर्ट रहें और कब पहचान करें, क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, और ट्रीटमेंट के बारे में भी हमने बात करी। तो डॉक्टर, ट्रीटमेंट से जुड़े अगर बात करें तो इस फील्ड में, इस ट्रीटमेंट फील्ड में स्पाइनल डेफोर्मिटीज की क्या नई टेक्निक्स हैं जिनके जरिए इलाज किया जाता है?
2: आजकल स्पाइनल डिफॉर्मिटीज को, चूंकि मेजर कंसर्न इसमें नर्व्स का होता है, तो आजकल हम नर्व्स की मॉनिटरिंग करके सर्जरी करते हैं। तो हमारे पास स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे कि हम नर्व्स को मॉनिटर कर सकते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी, कि नर्व्स के ऊपर कुछ प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नर्व्स के ऊपर कोई इंजरी हो रही है कि नहीं हो रही है। दूसरी बात, हमारे पास चूंकि स्क्रूज एंड रॉड्स डालते हैं इसके अंदर, और स्पाइनल डिफॉर्मिटीज में स्क्रूज डालना बहुत चैलेंजिंग होता है, तो इसके लिए हमारे पास इंट्रा ऑपरेटिव ड्यूरिंग हम सीटी स्कैन भी यूज करते हैं, तो स्क्रूज डालने में हेल्प करता है। रोबोट है हमारे पास आज की तारीख में, रोबोट भी हमारी हेल्प करते हैं। एनेस्थीसिया के प्रोटोकॉल्स काफी चेंज हुए हैं, तो ये सब चीजें जो है इससे काफी सेफ हो गई है स्पाइन सर्जरी। तो आजकल जो हम बात करते हैं स्पाइन सर्जरी की, हम स्पाइन सर्जरी की बात नहीं करते, हम सेफ स्पाइन सर्जरी की बात करते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि लोगों के दिलों में ना अगर इस समस्या के बारे में अगर कुछ अगर प्रॉब्लम है भी, तो वो ये मानते हैं कि एक बार उनकी सर्जरी हो गई तो फिर वो बेड रेस्ट पे रहेंगे या फिर वर्क नहीं कर पाएंगे, कुछ ऐसी भ्रांतियां भी हैं, डर है एक्चुअली।
2: आज की तारीख में काफी सेफ है और ये डर ठीक नहीं है। अगर आपको स्पाइन सर्जरी की जरूरत है और स्पाइन सर्जरी करते हैं तो उसके बेनिफिट, हर चीज में बेसिकली आपको रिस्क बेनिफिट रेशियो देखना पड़ता है, और अगर बेनिफिट ज्यादा है तो स्पाइन सर्जरी आज की तारीख में काफी सेफ है।
1: जी डॉक्टर, कुछ पॉस्चर्स आप जनरली, जैसे क्योंकि आप रेडियो पे ऐसे तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन उठने बैठने में कुछ और पॉस्चर जो कि आपको इस डिफॉर्मिटीज से बचा सकते हैं?
2: जैसे कि मैंने बताया कि आप जैसे बिस्तर से उठते हैं तो सबसे पहले झटके से नहीं उठना है, पहले पैरों को आप जो है एक तरफ करके बिस्तर की तरफ लटका के फिर आप उठेंगे, तो ये सब चीजें बड़ी हेल्प करती हैं। इसके अलावा जब भी आप बैठे हैं स्ट्रेट बैठे, सामने देखें, शोल्डर्स को बिल्कुल जो है वो जैसे मिलिट्री पोजीशन इसको कहते हैं ना, कि आप पूरा ऊपर करके आप बैठेंगे, तो वो आपको जो है ओवरऑल पॉस्चर करेक्ट करने में ठीक करेगा। जितना स्ट्रेट बैठ सकते हैं उतना वो आपकी हेल्प करेगा। काउच में स्लाउच करके नहीं बैठे, लेट के नहीं पड़े, लेट के टीवी नहीं देखें, तो ये सब चीज जो है आपके लॉन्ग टर्म उसमें हेल्प करेंगे।
1: जी राहुल जानना चाहते हैं कि अपनी हाइट बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा लटकने जैसे जो है काम करे हैं, एक्सरसाइजेस करी हैं, जिसकी वजह से अब इन्हें दर्द रहने लग गया है, तो आप राहुल को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे?
2: ये तो कोई कारण नहीं हुआ बैक पेन के कॉज का, बट अगर आपकी एज जैसे मैंने बताया अगर 18 साल से कम है और आपको बैक पेन हो रहा है तो फिर आई विल सजेस्ट कि एक बार आप डॉक्टर को देखें। बट अगर आप नॉर्मल बात करें तो बैक पेन लटकने से नहीं होता, ऐसा तो कोई कारण नहीं है।
1: जी डॉक्टर, आपने अपनी बातों के दौरान जब आप हमने विषय पर बात कर रहे थे, विषय को जानना शुरू किया था, तो आपने बताया था स्कूल्स में आप कुछ ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं जिनके जरिए वहीं पर पहचान कर ली जाए, तो इस पर हम थोड़ी सी और बात करना चाहेंगे आपसे।
2: जैसा कि मैंने आपको बताया कि फीमेल्स में ये ज्यादा कॉमन होता है, गर्ल्स में ज्यादा कॉमन होता है, 7:1 का रेशियो है और पता नहीं चलता, लेट स्टेज में पता चलता है। तो ऐसे में हमारी जो सोसाइटी है, स्पाइन की सोसाइटी है, उन्होंने हमने एक ऐप भी डिजाइन किया है और हम लोग जाते हैं वहां पर, स्कूल्स में जाते हैं। यूजली हम जो है ये 6-8 क्लास के बच्चों में यूजली इस एज ग्रुप में ज्यादा कॉमन होता है, तो उनको हम जो है स्क्रीन करते हैं। बहुत ही सिंपल है, 1 या 2 मिनट लगते हैं हमें देखने में कि उनके शोल्डर्स का बैलेंस कैसा है, शोल्डर्स ऊपर नीचे तो नहीं है, उनके हाथ के और जो बॉडी के बीच में जो डिस्टेंस है वो एक तरफ ज्यादा तो नहीं है, उनका कूला कोई ऊपर नीचे तो नहीं है, और ये सब चीजें हम देख के और उनके ऐप की हेल्प से भी हम लोग जो है ये पता कर सकते हैं कि इसको पोटेंशियल प्रॉब्लम है कि नहीं है, और जिनको हमें लगता है फिर हम उनके एक्सरेस कराते हैं और उससे हमें पता चल जाता है कि इसको ट्रीटमेंट चाहिए, कि क्या ट्रीटमेंट चाहिए। तो चूंकि हम जल्दी पिकअप कर लेते हैं तो ट्रीटमेंट फिर एक्सरसाइज से और ब्रेसेस से किया जाता है, रादर लेट स्टेज में जब पता चलेगा तो फिर हमें जो है सर्जरी के लिए जाना पड़ता है।
1: जी सभी लिसनर्स को आप सर डॉक्टर टिप ऑफ द डे क्या देना चाहेंगे?
2: देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि बैक पेन कोई ऐसा नहीं है कि आप सुबह एक्सरसाइज कर लेंगे शाम को एक्सरसाइज कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप बैक पेन जो है, बैक केयर जो है वो 24 घंटे चलती है और 24 घंटे आपको अपनी बैक का ध्यान रखना चाहिए।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने इतने वाइड टॉपिक को हमारे लिसनर्स के लिए इतने सरल शब्दों में समझा दिया, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। हमारे साथ डॉक्टर भावुक गर्ग जुड़े आज के रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम में, जिनसे कि हमने जाना स्पाइनल डेफोर्मिटीज के बारे में। कुछ मिथ्स को भी डॉक्टर ने बिल्कुल खारिज किया और कुछ अवेयरनेस जो बहुत जरूरी थी आप सभी लिसनर्स के लिए डॉक्टर ने हमें बताई। तो मुझे लगता है हमारे जितने भी लिसनर्स आज हमारे प्रोग्राम से जुड़े और उन्होंने जाना भी, तो वो ऐसे में अवेयरनेस अपने और भी सुनने वालों को बताएंगे, अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को, जिनसे कि वहां भी जहां अवेयरनेस की जरूरत है वे भी इस विषय से परिचित हो जाएं। स्पाइनल डिफॉर्मिटीज टाइप कॉजेज एंड ट्रीटमेंट पर हमने बात की आज रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम के माध्यम से। यही मैं सृजन राजपूत आप सभी से लेती हूं अनुमति। यूं ही जुड़े रहे आकाशवाणी रेनबो 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसीज के साथ सभी ज्ञानवर्धक प्रोग्राम्स के लिए। नमस्कार।
0: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: आकाशवाणी
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल। दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, Always wherever you are, 102.6 आपके लिए।

आकाशवाणी रेनबो पर अब सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बिना विकसित भारत का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी सहित अन्य नेताओं ने शिक्षकों को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के गोवा दौरे पर रहेंगे। वो कल गृह मंत्रालय के विभागों में गोवा से जुड़े मामलों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कोयला मंत्रालय ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने वाली योजना के तहत कोई आवेदन नहीं मिलने की खबरों को खारिज किया है। मध्य प्रदेश में भोपाल देवास रोड पर स्थित फांदा टोल प्लाजा पर बैरियर मुक्त टोल वसूली प्रणाली की पायलट टेस्टिंग शुरू हो गई है। भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने व्यापक तैयारियां शुरू की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पड़ोसी देश नेपाल में बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। डेनमार्क और यूरोपीय संघ के 4 अन्य देशों ने यूरोपीय संघ से बाहर के देशों में प्रवासियों की वापसी के लिए केंद्र स्थापित करने की एक रूपरेखा पर सहमति जताई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस पर गिद्धों के संरक्षण पर बल दिया है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। बिहार में गंगा, गंडक और कोसी नदी में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। और महिला एशिया कप 2026 में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। ये थे अब तक के AIR मुख्य समाचार।

हाय दोस्तों, स्वागत है आपका लम्हे प्रोग्राम में और मैं हूँ आपका आरजे चेतन। आसपास के वातावरण साफ सुथरा हो तो किसे अच्छा नहीं लगता है, और इसमें नगर निगम और स्वच्छता कर्मी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। वो तो अपने तरफ से पूरा योगदान देते हैं, परंतु इसके बावजूद कुछ लोग गंदगी और कचरा करने से बाज नहीं आते। वो भी इंसान ही है, आखिर कितना साफ करेंगे। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने आसपास को साफ रखने की जिम्मेदारी स्वयं ही करना है, ताकि साफ सफाई से हम स्वस्थ रहे और हमारा वातावरण भी स्वच्छ रहे। आसपास की रखो सफाई, इसमें हम सबकी भलाई। स्वच्छ रखेंगे वातावरण, स्वस्थ रहेंगे हम हर पल हर क्षण। घर को हर दिन करें सफाई। हमें हमारे घर के हर रोज सफाई करना चाहिए। वह कचरा इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए, इससे कीटाणु पनपते हैं और बीमारियां फैलती है। घर में कुछ ऐसे कोने होते हैं जिसे नियमित रूप से सफाई करना चाहिए, जैसे रसोई घर। रसोई घर जहां हमारा भोजन इत्यादि बनता है, उसकी सफाई नियमित होना चाहिए। बर्तन को अच्छी तरह से साफ रखना चाहिए। गैस स्टैंड बर्तन रखने की जगह सभी जगह साफ करना चाहिए। रोज किचन की झाड़ू लगाना चाहिए, ताकि खाने के साथ हम कोई गंदगी अपने खाने में आने न दे और साफ सुथरा भोजन ही खाए, साफ सुथरा किचन रखे। नियमित पोंछा और धोने जैसे सामान को धोए, बाथरूम को रोज साफ करें, दीवारें साफ करें, कुछ अच्छे से एंटीमाइक्रोबियल यूज करके साफ करें तो और भी अच्छा है। जहाँ हम हमारी गाड़ी रखते हैं, वहाँ रोज झाड़ू लगाए और बगीचे में सफाई रखे हो। कोई भी कचरा और प्रयोग में ना आने वाले सामान को इकट्ठा न होने दे। यदि हम हमारे किचन, बाथरूम और पूरे घर में साफ सफाई नहीं रखेंगे तो चचुंडर, कॉकरोच, मक्खी, चींटियां, मच्छर आदि पनपते हैं। और साफ सफाई में अगर हम लापरवाही बरतते हैं, बर्तन और अन्य सामानों के साथ ये गंदगी हमारे मुंह में जाते हैं, जिससे हमें कई तरह की बीमारियां पकड़ लेते हैं। यदि मच्छर पनपते हैं तो मलेरिया, कॉलरा, निमोनिया, पीलिया या सब बीमारी होती है जो कि गंदगी की वजह से फैलती है। इसीलिए हमें हमारा घर और आंगन की सफाई पर नियमित ध्यान देना चाहिए। इसीलिए पूरे घर पर नियमित झाड़ू और पोंछा लगाना चाहिए। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। धूल इत्यादि को पहुंचने और बगीचे में कहीं भी पानी नहीं होने देना चाहिए। किसी भी तरह की गंदगी बीमारी का लक्षण होता है, इसीलिए बचना चाहिए और नियमित साफ सफाई करना चाहिए। कुछ लोगों का सोचना है कि जहां गरीब व्यक्ति रहते हैं वही ज्यादा गंदगी होती है, परंतु ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि गरीबी और साफ सफाई का दूर दूर तक कोई मेल नहीं है। गरीबी तो इंसान की मजबूरी है, परंतु सफाई तो उसकी जिम्मेदारी है। इसके लिए अमीर या गरीब मायने नहीं रखता, और घर की साफ सफाई में सबकी बराबरी से हाथ बांटने की मंशा होनी चाहिए। केवल घर के बड़े, जिसमें माँ होती है, माँ घर के हर काम को करती है, तो क्या ये घर केवल माँ का होता है? उसमें रहने वाले सभी सदस्यों का नहीं होता है। इसीलिए सभी सदस्यों को मिलजुल कर इसकी जिम्मेदारी उठाना चाहिए, और यह सोच परिवार के हर सदस्य के नजरिए पर निर्भर करता है। बचपन से ही बच्चों की देखभाल माता पिता और घर के अन्य सदस्य करते हैं, लेकिन बच्चे जब थोड़े बड़े होने लगते हैं तो उन्हें आपको सिखाना होगा कि साफ सफाई रखना जरूरी है। बचपन से ही उसे अपनी सफाई की शिक्षा दे, साथ ही उसे अपने आसपास की जगह को साफ रखना सिखाए। उसे बताए कि अगर साफ सफाई नहीं रखी जाएगी तो बीमारी होगी, और बीमारी होगा तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसीलिए उसे बताए कि अपनी साफ सफाई रखे और अपने आसपास की जगह को भी साफ रखे। साफ सफाई में अपने बड़ों की मदद करे, इससे वह भी साफ सफाई करना सीखेगा और स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट
09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। साफ सफाई इंसान की फितरत होती है, वह अपने घर के आसपास तो साफ रखते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं घर ही को अपना समझ और अपने घर के बाहर झूठा और जो भी कचरा होता है उठाकर बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी केवल घर के अंदर तक ही सीमित है। इसीलिए अपना फर्ज भूल जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि सड़क, अपने घर का बगीचा साफ रखना उनकी जिम्मेदारी है। सड़क से ही गंदगी हमारे घर तक आती है और इसके साथ ही कई तरह की बीमारियां भी लेकर आती है। इसीलिए स्वयं साफ सफाई रखें और जो कर्मचारी और नगर निगम की गाड़ियां आती है उसमें अपने घर को साफ रखकर उन्हें अपना पूरा योगदान प्रदान करें। इस प्रकार हम हमारे घर के और आसपास की सफाई, हमारे स्वास्थ्य के साथ ही वातावरण को भी साफ रखते हैं और इसका प्रथम पाठ हम हमारे घर से ही मिलता है। यदि हम हमारे घर को और हमारे आसपास के वातावरण को साफ रखेंगे तो धीरे धीरे शहर और शहर, देश, सभी जगह सफाई दिखने लगेगा। प्रदूषण में जमा हमारे देश की गिनती निचले स्तर पर की जाती है, वही हमें आगे और आगे प्रथम स्थान पर लाना होगा और इसकी शुरुआत हमें हमारे आसपास के वातावरण से शुरू करना होगा। देश की सफाई एकमात्र सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं है, क्या इसमें नागरिकों की कोई भूमिका नहीं है? हमें इस मानसिकता को बदलना होगा। विद दिस लवली कोट, दिस इज चेतन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे इन लम्हे प्रोग्राम। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट प्रोग्राम। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम, बाय। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर एक बार फिर आपके साथ जुड़ चुकी हूँ मैं दीपिका। इस बार लेकर हाजिर हूँ प्रोग्राम अल्फा जैन। सैटरडे का दिन है, जानते हैं आप, सैटरडे को हम इस प्रोग्राम में कहते हैं लेट्स डिटॉक्स, जो कि काफी जरूरी है। डिटॉक्स उन थॉट्स का जो दिमाग को परेशान कर रहे हैं, डिटॉक्स बॉडी का ताकि हेल्थ बेटर हो सके। डिटॉक्स बहुत सारी चीज़ों का होता है और ये बहुत ज़रूरी है ताकि आने वाले हफ्ते के लिए, आने वाली खूबसूरत ज़िंदगी के लिए हम खुद को तैयार कर सकें। इसलिए बीच बीच में डिटॉक्स करना, खुद को वक्त देना, खुद को रिफ़्रेश महसूस करवाना, रिचार्ज करना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। अब किस बारे में यहाँ पर आज मैं बात करने वाली हूँ बताऊंगी आपको। फिलहाल सोनू निगम की आवाज में इस खूबसूरत से गाने के साथ करते हैं इस शो की शुरुआत। आप थाम लीजिए मेरा हाथ और निकल पड़िए इस सफर पर मेरे साथ।

0: of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
2: बेटा कुछ खा लो, मेरा ठाते आते शाम हो जाएगी।
1: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
2: हैं? इतनी जल्दी?
1: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुर होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
4: आकाशवाणी एफएम रेनबो, आप हैं दीपिका के साथ, प्रोग्राम आप यहाँ पर आज सुन रहे हैं अल्फा जैन, जहाँ सैटरडे को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं लेट्स डिटॉक्स। अब देखिए लेट्स डिटॉक्स में सबसे जरूरी चीज पता है क्या है, कभी कभी पॉज लेना, जो हम नहीं लेते हैं, लेना चाहते हैं तो नहीं ले पाते हैं, कभी जिम्मेदारियों में उलझे रह जाते हैं, कभी जिंदगी की उलझनों में इस तरह उलझते हैं कि अपने लिए ही वक्त नहीं निकाल पाते, कभी कुछ तो कभी कुछ। पर भागती दौड़ती जिंदगी में हमें कभी कभी लाइफ से पॉज भी लेना चाहिए और देना चाहिए एक दिन खुद को खुद के नाम। आप सोच रहे होंगे, आप नहीं सोच रहे होंगे बल्कि अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि भागदौड़ से भरी जिंदगी है हमारी, रोज तो काम करना ही है, ऐसे में एक दिन काम ना करके या एक दिन ब्रेक लेकर क्या फर्क पड़ जाएगा। बहुत फर्क पड़ जाएगा मेरे दोस्त, यकीन मानिए, एक दिन हमें लगता है लेकिन जब वो एक दिन का वक्त हम खुद को देते हैं ना, तो जिंदगी बहुत हद तक बदलती है। कैसे एक दिन का ये ब्रेक हमें मेंटली और फिजिकली रिचार्ज कर सकता है, करूंगी बात इस बारे में। फिलहाल के लिए एक और ब्यूटीफुल सा ट्रैक पहुंच रहा है आप तक, एंजॉय कीजिए और दीपिका के साथ अपने इस साथ को बनाए रखिए। 4:22 हो चुके हैं राइट फ्रॉम द स्टूडियो क्लॉक, आपको कहीं नहीं जाना है, बने रहना है यहाँ मेरे साथ।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो, आप हैं दीपिका के साथ। प्रोग्राम आप इस वक्त यहाँ पर सुन रहे हैं अल्फा जैन, जहाँ सैटरडे को हम कहते हैं लेट्स डिटॉक्स। वेल दोस्तों, बात मैंने छेड़ी कि कैसे जरूरी है वीक में या फिर बीच में कभी भी जब आपको लगे तो एक दिन का ब्रेक लेना, वो ब्रेक जो आपको मेंटली रिचार्ज कर सकता है आने वाले हफ्ते के लिए, आने वाले वक्त के लिए, मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से आपको रिचार्ज कर सकता है। ये जो पॉज डे है ना, इसकी बहुत जरूरत होती है, यकीन मानिए। अब आपको सोचिए, अगर आप अपने फोन को लगातार इस्तेमाल करते रहें, उसे चार्ज नहीं करें तो क्या होगा, बैटरी खत्म हो जाएगी ना। हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस ये है कि हम मशीन नहीं है तो हम ये बता नहीं सकते हैं कि बैटरी खत्म हो गई, लेकिन हम महसूस कर रहे होते हैं। हमारा शरीर, हमारा दिमाग, हमारे इमोशंस लगातार इस्तेमाल होने के बाद रिचार्ज मांगते हैं। इसीलिए एक दिन अपने नाम करना कोई सेल्फिश डिसीजन नहीं है, बल्कि खुद की केयर करने का एक जरूरी हिस्सा है। एक ऐसा दिन जब आप चीजों को परफेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे, आप सुबह आराम से बैठे हैं, अपनी मर्जी से उठे हैं, हाथ में चाय है, कॉफी है, फोन नहीं है, कुछ मिनट आप खिड़की के पास बैठे हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, अपने मन की बात कर सकते हैं, जिन दोस्तों से बात नहीं हुई है उनसे बात कर सकते हैं, या कुछ नहीं करना है तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो एक दिन आप अपने नाम कर सकते हैं, जो बहुत जरूरी है, यकीन मानिए मेरी बात।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: आकाशवाणी एफएम रेनबो, दीपिका के साथ हैं, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं अल्फा जैन।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM Rainbow.
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: जी हाँ, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो। आपके साथ मैं हूँ दीपिका और प्रोग्राम यहाँ पर आप इस वक्त जो सुन रहे हैं उसका नाम है अल्फा जैन, जहाँ आज मैं आपसे कह रही हूँ कि कितना जरूरी है मेंटली और फिजिकली खुद को रिचार्ज करने के लिए थोड़ा सा पॉज लेना। कभी कभी ज़रूरी नहीं होता है कि आप हर नोटिफिकेशन का जवाब दें, हर ट्रेंड को जाने, इसलिए कभी कभी फ़ोन को साइड में रख देना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि कई बार दुनिया के सारे नोटिफिकेशंस को म्यूट करके आपको खुद को सुनना चाहिए। और ये कोई अचीवमेंट हासिल करने की ज़रूरत नहीं है आपको आराम करने के लिए कि ये हो जाएगा तब हम आराम करेंगे या फिर ये सारी चीज़ें निपट जाएं एक बार उसके बाद रेस्ट करेंगे। नहीं, बीच बीच में चुपचाप बैठना, रेस्ट करना एक हीलिंग होता है, वो हीलिंग जो आपको मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करती है आने वाले वक्त में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीने के लिए, अपने इमोशंस को समझने के लिए और एक बेहतर हेल्थ के लिए।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: जी हाँ, ये है आकाशवाणी FM रेनबो 102.6, जहाँ आपके साथ जुड़ी हुई हूँ मैं दीपिका। और अभी बस वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन हाँ, जो बातें मैंने कही हैं उन्हें जरूर याद रखिएगा। भागती दौड़ती जिंदगी में से कुछ लम्हे चुराइएगा अपने लिए और आप खुद अंतर महसूस कर पाएंगे कि कितना फिजिकली और मेंटली आप खुद को रिचार्ज फील करेंगे, अपने काम करने के तरीके में बदलाव महसूस करेंगे। और ये ब्रेक आपका हक है, तो आपको ये वाला हक जो है ये खुद को देना ही चाहिए। फिलहाल के लिए आपको यहाँ पर मुझे इजाजत देनी होगी। 5 बजे से आपके साथ जुड़ेंगे शाहिद, लेकर आएंगे प्रोग्राम सिटी लाइट, शहर की हलचल से करवाएंगे आपको रूबरू। तो उनके साथ बनाए रखिएगा अपना साथ। यहाँ अभी दीपिका को इस प्रोग्राम में दीजिए इजाजत, जल्दी ही फिर होगी मुलाकात। जाते जाते वही कहूंगी जो हर बार कहती हूँ, हम सभी यूं ही हंसते हंसाते, गाते गुनगुनाते, जिंदगी के हर एहसास को गले लगाते, आने वाली खुशियों को सजाते और उम्मीदों से हाथ मिलाते रहेंगे। और दोबारा कभी सिर्फ यही मिलेंगे, क्योंकि यही अपना ठिकाना है, हमें और कहाँ जाना है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति ने ये बात कही।
1: आम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वह सही मायनों में प्रगतिशील समाज होता है। इस अवसर पर 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। श्री मोदी ने बच्चों में अत्याधुनिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई। उन्होंने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की।
2: ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा सा नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है क्या। उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस, उसके कारण क्या भय है, प्रकार से मैं पूरी शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते।
0: प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए बच्चों को कक्षा से बाहर ले जाने और उन्हें वास्तविक जीवन के कौशल तथा विभिन्न कार्यों से जोड़ने के महत्व पर बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने घोषणा शिक्षक दिवस के अवसर पर की। ये व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए एक नियमित मंच प्रदान करेगी। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सेवा नियमों के कर्मचारियों और उनके परिवारों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया। डॉ. सिंह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम CSS की CSS शील्ड पहल के शुभारंभ करते हुए कहा कि ये पहल कार्मिक मंत्रालय के उस व्यापक प्रयास के अनुरूप है जिसके अंतर्गत सरकारी सेवा प्रणालियों को कर्मचारियों और उनके परिवारों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जा सकता है। त्रिपुरा में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। शुरुआती चरण में प्रशिक्षण और योजना तैयार करने का काम होगा। घर घर सत्यापन 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना में एक महिला मंत्री को हटाए जाने को अन्यायपूर्ण बताया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की चुप्पी पर सवाल उठाए। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने केरलम के त्रिशूर में कल रात एक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले कॉलेज के 8 विद्यार्थियों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। तमिलनाडु के डिंडीगुल से आ रहे इन 8 विद्यार्थियों को ले जा रही एक कार सड़क निर्माण और यातायात डायवर्जन के काम के दौरान एक खड्डे ट्रैक से टकरा गई। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि घटना से पहले घटनास्थल पर व्यापक सुरक्षा उपाय और चेतावनी संकेत लगाए गए थे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्योंग से होगा। वहीं महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच दुबई में भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। भारत थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, খন্তেক পাছতেই ক্ৰমে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মে সর ফিরোজি। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत संभव है। शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वही सही मायने में प्रगतिशील समाज है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉप आउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है।
2: हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था। अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत को विश्व की कौशल राजधानी के रूप में स्थापित करना और साथ ही ज्ञान शक्ति बनना देश की प्राथमिकता है। इस अवसर पर 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई। उन्होंने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की।
3: ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा से नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस, उसके कारण क्या भय है? प्रकाश से मैं पूरी शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते।
1: सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की। ये व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए नियमित मंच प्रदान करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत शिलालेखों और समुद्री व्यापार से लेकर गणित तक अपनी विरासत का अध्ययन करने और उसे दोबारा प्राप्त करने में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। नई दिल्ली में वार्षिक इतिहास पुरस्कार समारोह और डॉ एस एल भैरप्पा स्मृति व्याख्यान में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर है और अपनी विरासत को समझने के लिए अब किसी और की अनुमति का इंतजार नहीं करता। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने सेवा नियमों को कर्मचारियों और उनके परिवारों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया। डॉ सिंह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम की सीएसएस शील्ड पहल का शुभारंभ करते हुए कहा कि ये पहल कार्मिक मंत्रालय के उस व्यापक प्रयास के अनुरूप है जिसके तहत सरकारी सेवा प्रणालियों को कर्मचारियों और उनके परिवारों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जा रहा है। त्रिपुरा में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। शुरुआती चरण में प्रशिक्षण और योजना तैयार करने का काम होगा। घर घर सत्यापन 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक किया जाएगा। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में बचाव अभियान जारी है जबकि लगभग 5000 लोग अब भी लापता हैं। अब तक 13000 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैनवी क्योंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। President Draupadi Murmu has said, "A Vikasit Bharat will only be possible with quality education." She said a society that respects their teachers is a progressive society in right terms. The President was addressing the National Teachers Award Ceremony 2026 in New Delhi on the occasion of Teachers Day today. The President stressed that education is the most effective means of realizing the ideal of equality of opportunity enshrined in our

0: প্ৰিয় শ্ৰোতা, খন্তেক পাছতেই সংস্কৃতত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। गुणवत्तापूर्ण शिक्षयैव विकसित भारतस्य निर्माणं सम्भवेदिति राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः प्राख्यापयत्। अत्रावसरे सा अष्टचत्वारिंशत् शिक्षकेभ्यः राष्ट्रिय पुरस्कारानपि प्रदत्तवती। छात्राणां जीवन संस्काराय पाठ्यपुस्तकेभ्यः परं गन्तुं शिक्षकान् प्राचोदयत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। सः बालकेषु पटल दर्शन व्यसनस्य न्यूनीकरणाय क्रीडा बहिरंग प्रवृत्तीनां च संवर्धनाय आह्वानम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सायं नवदिल्ल्यां श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इत्यस्य शताब्दी समारोहं संबोधयिष्यति। भारतस्य प्रधान न्यायाधीशः सूर्यकान्तः नवदिल्ल्यां जायमाने ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मञ्चे स्वस्थ असहमतेः विमर्श संस्कृतेश्च महत्त्वं प्रतिपादितवान्। जलौघ प्रभाविताय नेपाल देशाय भारतेन 95 टन परिमिता सहायता सामग्री प्रेषिता। अपि च महिलानां एशिया चषक 20-20 प्रतिस्पर्धायाः ए वर्गस्य अन्तिम रोमाञ्चक द्वन्द्वे अद्य रात्रौ दुबई नगरे चिरप्रतिद्वन्द्विना पाकिस्तानेन सह योत्स्यते भारतम्।

0: राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य उदघोषयत् यत् विकसित भारतस्य स्वप्नः तदैव सम्पत्स्यते यदा शिक्षा गुणवत्ता पूर्णा सम्भविष्यति। शिक्षक दिवसावसरे नवदिल्ल्याम् आयोजिते 26,000 राष्ट्रिय शिक्षक पुरस्कार समारोहे सम्बोधयन्ती सा प्रावोचत् यत् यः समाजः शिक्षकानाम् आदरं विदधाति स एव वस्तुतः प्रगतिशीलः समाजः मन्यते। राष्ट्रपतिः प्रत्यपादयत् यत् अस्माकं संविधाने निहितस्य समानावसरस्य यथार्थप्राप्तौ शिक्षैव सर्वोत्कृष्टं साधनं वर्तते। प्राथमिकविद्यालयेषु छात्राणां विद्यात्यागमानाङ्कस्य दूरीकरणे शिक्षकाणां प्रयासाः एव हेतुभूतास्सन्ति। सान्यरूपयत् यत् शैक्षिक उत्कृष्टता कौशलसंवर्धनम् उद्यमिता च राष्ट्रस्य विकासे निर्णायकं योगदानमावहन्ति। भारतं ज्ञानशक्तिं विधाय जगति कौशलराजधानित्वेन प्रतिष्ठापयितुं देशस्य प्राथमिकता वर्तते। सा प्रतिपादितवती यत् ज्ञानं शक्त्याः महत्तरः स्रोतः अस्ति, यज्जनं स्वातन्त्र्येण चिन्तयितुं सुविज्ञातान् निर्णयान् गृहीतुं राष्ट्रविकासे सार्थकम् अवदानं दातुं च सामर्थ्यं प्रयच्छति। राष्ट्रपतिवर्या अवदत् यत् कर्तव्यनिष्ठाः शिक्षकाः राष्ट्रनिर्माणस्य अग्रिमपङ्क्तौ तिष्ठन्तः शिल्पिनः सन्ति।
1: हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्श को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था, अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा।
0: राष्ट्रपतिना नारीणाम् अधिकार संरक्षणाय सावित्रीबाई फुले महोदयायाः पावन स्मृतिरपि सप्रश्रयं समुद्भाविता। अत्रावसरे राष्ट्रपति महोदया राष्ट्रिय शिक्षक पुरस्कारान् समर्पयत्। 27 राज्येभ्यः 7 केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः केन्द्रसर्वकारस्य 6 स्वायत्त संघटनेभ्यश्च चिताः 48 विद्यालयीयाः अध्यापकाः एतान् पुरस्कारान् प्राप्तवन्तः। सहैव राष्ट्रपतिः उच्च शिक्षण संस्थानानाम् अथ च पॉलिटेक्निक संस्थानानाम् 21 प्राध्यापकेभ्यः राष्ट्रिय सम्मानं प्रायच्छत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अध्यापकान् समाहूतवान् यत् ते केवलं पाठ्यपुस्तकेषु आत्मानं न बद्ध्वा छात्राणां जीवन संस्कारे बाल्यभावस्य सुरक्षायै महत्तरं दायित्वं निर्वहेयुः। गतदिने नवदिल्ल्यां राष्ट्रिय शिक्षक पुरस्कार विजेतृभिः सह संवादं कुर्वन् श्रीमोदी एतान् विचारान् न्यरूपयत्। सामाजिक संचारपटले अस्य संवादस्य कतिपयान् दृश्यक्षणान् संयोज्य प्रेषिते एकस्मिन् सन्देशे प्रधानमन्त्रिणा विशेषतया बलं दत्तं यत् शिक्षकाः सुनिश्चिनुयुः यत् प्रत्येकस्मिन् छात्रे विद्यमानः बालकः सदा सजीवः तिष्ठेत्। तदर्थं शिक्षकाः स्वान्तर्गतमपि बाल्यभावं रक्षयेयुः। सः प्रत्यपादयत् यत् बालकेषु वास्तविक परिवर्तनमानेतुं शिक्षकाः केवलं पाठ्यक्रमे सीमिताः न भूत्वा तेषां समग्र जीवनेन सह एकी भवेयुः।
2: पूरी शिक्षा जगत से ये कहना चाहता कि हमें पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके सिलेबस से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते। टीचर का काम है कि उसके भीतर का बचपन बना रहे।
0: स्वास्थ्य सामाजिक प्रकरणेषु कथयन् श्रीमोदी बालकेषु प्रवर्धमानां पटल दर्शन व्यसनं प्रति गभीरां चिन्तां प्रकटितवान्। अस्य पटल व्यसनस्य उपशमनाय सः क्रीडा प्रोत्साहनं बहिः क्रीडा प्रवृत्तिः सर्जनात्मक कार्याणि च प्रभावशालिनः उपायाः सन्तीति व्यचारयत्।
2: एक विषय है स्क्रीन टाइम, अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा। खेल कूद मतलब वीडियो गेम नहीं, मैंने एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकता। और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
0: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जाल पटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चल दूरभाषीय तंत्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य शिक्षक दिवसावसरे राष्ट्रपतिनः द्रौपदी मुर्मू वर्यायाः एकं वशिष्टम् आलेखं सामाजिक संचार पटले प्रासारयत्। स्वीये संदेशे श्रीमोदी अलिखत् यत् अयम् आलेखः अध्यापन कर्म मानवतायाः नवनिर्माणस्य स्वतंत्र चिन्तनस्य जिज्ञासाभावस्य च प्रवर्धनार्थं पवित्रकार्यत्वेन सविस्तरं प्रस्तौति। सः न्यरूपयत् यत् राष्ट्रपतिः छात्रान् उत्तमं मानवरूपेण निर्मातुं शिक्षकाणां समाह्वानं कृतवती। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य सायं नवदिल्ल्यां श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इत्यस्य शताब्दी समारोहं सोत्साहं भागं भजिष्यति। अत्रावसरे श्रीमोदी सभामपि संबोधयिष्यति। दिल्ली विश्वविद्यालयस्य शीर्षघटक रूपेण प्रतिष्ठितः श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इत्येतत् भारतस्य उच्चशिक्षा संस्थानेषु अग्रगण्यः मन्यते। विदेश मन्त्रालयः अवदत् यत् नेपाल देशस्य जलाप्लावितात् त्रिशूली आपण क्षेत्रात् पञ्चवर्षीय बालकेन सह इतोपि त्रयः भारतीयाः नागरिकाः रक्षिताः, येन रक्षितानां भारतीयानां संख्या 179 अभवत्। एमईए प्रवक्ता रणधीर जायसवालः ह्यः अवदत् यत् 75 यावत् भारतीयाः नागरिकाः लुप्ताः सन्ति। प्रवक्ता अवदत् यत् गतमासस्य 26 दिनांके नेपालदेशे विनाशकारी आकस्मिक जलाप्लावनात् आरभ्य भारतेन नेपालदेशाय प्रायः 95 टन्मिता सहायता सामग्री प्रेषिता। विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता अवदत् यत् नेपालस्य सर्वकारस्य आवश्यकतानुसारं भारतं नेपालाय निरन्तरं साहाय्यं प्रदास्यति। भारतस्य मुख्यन्यायाधीशः सूर्यकान्तः अद्य स्वस्थमतभिन्नतायाः विचारविमर्शस्य च संस्कृतेः महत्वम् अधोरेखितवान्। नवदिल्ल्याम् आयोक्ष्यमाणस्य ब्रिक्स मुख्यन्यायाधीशानां मञ्चस्य अंशत्वेन भारतस्य मुख्यन्यायाधीशेन अद्य ब्रिक्स सदस्यराष्ट्राणां सहभागीराष्ट्राणां च प्रतिनिधिमण्डलं सम्बोधितम्। समयोचितं पूर्वानुमेयं च न्यायदानम् आवश्यकमिति सः अस्मिन् विषये बलं प्रदत्तवान्। सः स्मरणम् अकरोत् यत् कथं नालन्दा विश्वविद्यालयः अत्यन्तं प्रख्यातं शैक्षणिककेन्द्रमासीत्, यत्र समग्रविश्वस्य छात्राः संशोधकाः च विना कस्यापि भेदभावेन बाधया वा प्रवेशिताः आसन्। महिलानाम् एशिया चषक 20-20 ए वर्गस्य अन्तिम रोमाञ्चक द्वन्द्वे अद्य रात्रौ दुबई नगरे चिरप्रतिद्वन्द्विना पाकिस्तानेन सह भारतं योत्स्यते। इति वार्ताः।
3: बातरी पासते उभति आहिसु जुबवाणी अनुष्ठानर मजुआलय। आमार अनुष्ठान प्रसारित होय आसे मीडियम एफएम 99.9 मिटारत 1035 কিলোহার্জ আৰু ডিআইএম ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ 1026 কিলোহার্জত আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ পৰা। প্ৰিয় শ্ৰোতা, এটি আগবঢ়াইছো জ্যোতি পাঠকৰ এটি কথিকা।
4: ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনত শিক্ষকৰ ভূমিকা। সমাজ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনত শিক্ষকৰ ভূমিকা অন্যতম অপৰিসীম। শিক্ষক হ'ল এডাল মমৰ নিচিনা যিয়ে নিজে জ্বলি আনক পোহৰাই তোলে। এগৰাকী শিক্ষকৰ ভূমিকাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱন পোহৰাই তোলাত যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰে। শিক্ষক এজনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনৰ গতি সলনি কৰিব পাৰে। এজন শিক্ষকে ভাল পথত সৎ পথত থাকি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জীৱনত ভাল মানুহ হবলৈ উৎসাহিত কৰাৰ লগতে ভৱিষ্যত জীৱনত সফল হবলৈ বহু সহায় কৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰী, শিক্ষক, পাঠ্যক্রম, অনুশাসন, নৈতিকতা ইত্যাদি সকলো একোটা শিক্ষাৰ অংশ। অ আ ক খ শিকাৰ পৰা জীৱনৰ প্ৰতিটো খোজতে আমাক পথ দেখুৱাই দিয়া বহু শিক্ষক লগ পাওঁ, যিয়ে প্ৰতিটো খোজতে আমাৰ জীৱনত এক স্থান লাভ কৰে। পৃথিৱীত প্ৰথম চকু মেলাৰ পিছতে কথাৰ মাধ্যমেৰে এগৰাকী মাতৃয়ে নিজৰ শিশুটিক বিভিন্ন অংগী ভংগীৰে বহু কথাই শিকায়। আনকি প্ৰথম মা বুলি কোৱা শব্দটো এগৰাকী মাতৃয়ে শিকায়। আমাৰ জীৱনৰ প্ৰথম শিক্ষকগৰাকী হ'ল মা। শিশু এটা ডাঙৰ হোৱালৈ মাক

0: বিশ্ব দরবারত অসম সন্তান এজনা শিল্পীয়ে সমগ্র ভারত বিশেষকৈ অসমৰ নাম উজ্বলাই তুলিছিল। আজিও তেখেতৰ নাম সংগীত জগতৰ সৈতে জড়িত প্রতিজন ব্যক্তিয়ে সন্মান সহকারে লয়। শিল্পীসত্তার জড়িয়ে অমরত্ব লাভ করা এজনা মহান ব্যক্তিলৈ তেওঁৰ জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আমার শতকোটি প্রণাম। আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ বাতৰি বিভাগৰ দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত আজি নিশা 8:02 উচ্চ শিক্ষা শিতানত কৃতি শিক্ষকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাৰে সন্মানিত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গণসংযোগ আৰু সাংবাদিকতা বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক তথা লেখক ডঃ অংকুৰণ দত্তৰ সৈতে হোৱা এটি সাক্ষাৎকাৰ প্ৰচাৰ কৰা হ'ব। সাক্ষাৎ গ্ৰহণ কৰিব জিন্ত ৰাণী ডেকাই। ৰাজ্যৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে আজি গহপুৰৰ ছত্ৰং, যোগীবাৰী, ব্ৰহ্মগান, হুলেঙি, নবিল আদি বান ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি ক্ষয়ক্ষতিৰ বুজ লয়। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্থানীয় ৰাইজক ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলৰ সকলো সমস্যাৰ সমাধানৰ আশ্বাস দিয়ে। কিছুদিন পূৰ্বে অৰুণাচল প্ৰদেশত হোৱা মুষলধাৰ বৰষুণৰ ফলত ব্ৰহ্মজান নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হৈ মথাউৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ ফলত এই অঞ্চলসমূহ প্লাবিত হয়। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক প্ৰয়োজনীয় সকলো কাম তৎকালীনভাৱে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। পৰিদৰ্শনকালত বিধায়ক উৎপল বৰা, জিলা আয়ুক্ত কৰবী শইকীয়াকৰণৰ লগতে কেইবাগৰাকীও বিভাগীয় বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকে। দেশজুৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে আজি শিক্ষক দিৱস উদযাপন। অসমৰ দুগৰাকী শিক্ষকসহ দেশৰ 82গৰাকী শিক্ষক অধ্যাপকসহ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী মুৰ্মুৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক বঁটা প্ৰদান। প্ৰতিযোগিতামূলক শিক্ষা ব্যৱস্থাই শিক্ষাৰ্থীৰ কেৰিয়াৰ গঢ়াত ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰাই পৰামৰ্শৰ প্ৰয়োজন বুলি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ মন্তব্য। ৰাজ্যৰ 29খন জিলাত কালি নিশাৰে পৰা চলা অভিযানত এই পৰ্যন্ত 330 জন প্ৰবঞ্চকক আটক। আৰু ভাৰত ৰত্ন ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উপলক্ষে সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উদ্যোগত আজিৰে পৰা এলানি বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন। সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰিৰ ইমানতে অন্ত পৰিল। পৰৱৰ্তী বাতৰি সন্ধিয়া 7:10 শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই কৰিশ্মা ৰায়। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत संभव है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वही सही मायने में प्रगतिशील समाज है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉप आउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है।
2: हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था। अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा।
1: इस अवसर पर 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई। उन्होंने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की।
3: ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा से नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस, उसके कारण क्या भय है? प्रकार से मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते।
1: सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की। यह व्याख्यान श्रृंखला कानून न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए एक नियमित मंच प्रदान करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि भारत शिलालेखों और समुद्री व्यापार से लेकर गणित तक अपनी विरासत का अध्ययन करने और उसे दोबारा प्राप्त करने में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। नई दिल्ली में वार्षिक इतिहास पुरस्कार समारोह और डॉक्टर एस एल भैरप्पा स्मृति व्याख्यान में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर है और अपनी विरासत को समझने के लिए अब किसी और की अनुमति का इंतजार नहीं करता। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने सेवा नियमों को कर्मचारियों और उनके परिवारों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया। डॉ सिंह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम सीएसएस की सीएसएस शील्ड पहल के शुभारंभ करते हुए कहा कि यह पहल कार्मिक मंत्रालय के इस व्यापक प्रयास के अनुरूप है, जिसके तहत सरकारी सेवा प्रणालियों को कर्मचारियों और उनके परिवारों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जा रहा है। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में बचाव अभियान जारी है, जबकि लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13000 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। महिला टी20 क्रिकेट एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच दुबई में भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुका है। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी कियोंग से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारतीय जोड़ी ने पहला गेम जीत लिया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani. The news read by Lalima Aneja Dang. President Draupadi Murmu today said that a Vikasit Bharat will only be possible with quality education. Addressing the National Teachers Award Ceremony 2026 in New Delhi on the occasion of Teachers' Day, the President said that a society that respects their teachers is a progressive society in right terms. She asserted that education is the most effective means of realizing the ideal of equality of opportunity enshrined in our constitution. She said that the achievement of negligible primary school dropout rate has been made possible through the efforts of teachers. The President underlined that many students come from economically disadvantaged families who are first-generation learners or who transition from ordinary village schools to large city schools. She said some are naturally shy, some possess immense talent but lack self-confidence, and some are children with special needs. She noted that it is the special responsibility of teachers to instill confidence in them and uplift all such students who, for any reason, feel a sense of inadequacy.
2: कुछ विद्यार्थी गांव के किसी सामान्य स्कूल से शहर के बड़े स्कूल में आते हैं और थोड़ा असहज हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी स्वभाव से ही संकुची होते हैं। कुछ विद्यार्थी में बहुत प्रतिभा होती है, लेकिन उनमें

0: ভজনৰ অনুষ্ঠানটিৰ ইমানতে অন্ত পৰিল। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তেক পাছত 8:45 সমাচাৰ সন্ধ্যা, 9:00 নিউজ এট 9 আৰু 9:15 স্পট লাইট দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया, वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की जीडीपी वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भावी पीढ़ी के उद्यमियों और वैज्ञानिकों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करने में शिक्षकों की भूमिका पर बल दिया। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी। महाराष्ट्र के मेलशेत और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के लिए सबसे सफल पुनर्वास स्थल बना। उत्तरी उत्तर पूर्वी राज्यों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, बिहार, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में सोमवार तक तेज बारिश के आसार। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की 7.8% की तिमाही वृद्धि आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत अवरोध से नीतिगत गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में एसआरसीसी के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एसआरसीसी ने वर्षों से छात्रों की कई पीढ़ियों को सीखने, आगे बढ़ने और समाज में बदलाव लाने का अवसर दिया है।
2: जब कोई इंसान 100 वर्ष जीता है तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है, और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का होता है तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर हो जाता है। अपनी 100 वर्षों की इस यात्रा में एसआरसीसी ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा है। जो आए उन्होंने पढ़ा और जो निकले वो गढ़े हुए निकले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 14 करोड़ भारतीय मिलकर भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे। इससे पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपने भाषण में एसआरसीसी द्वारा वर्षों से उच्च स्तर बनाए रखने की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार में कुशल मानव संसाधनों की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने इसे युवा आबादी के लिए एक अवसर बताया।

0: बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SRCC के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली मेट्रो से गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षकों को सर्वोच्च सम्मान दिया जाना चाहिए क्योंकि वे भारत को सीखने और नेतृत्व करने में मदद करते हैं। शिक्षक दिवस पर आज एक लेख साझा करते हुए उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना, उनकी जिज्ञासा को जगाना, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना और उनकी तर्क शक्ति तथा निर्णय क्षमता को निखारना शिक्षण के सबसे उपयोगी और फलदायी आयामों में से है। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रेरणा दायक शिक्षा से ही उद्यमियों, वैज्ञानिकों और रचनात्मक कलाकारों की पीढ़ियां तैयार की जा सकती हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉप आउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है।
1: हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था। अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को विश्व की कौशल राजधानी के रूप में स्थापित करना और साथ ही ज्ञान शक्ति बनना देश की प्राथमिकता है।
1: चुने गए सुयोग्यों प्रशिक्षकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। देश के विकास में एकेडमिक एक्सलेंस, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अधिक महत्व है। भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के साथ साथ स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित करना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता में से शामिल है।
0: राष्ट्रपति ने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा को आगे बढ़ाने में सावित्रीबाई फुले की महत्वपूर्ण भूमिका को भी याद कर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने स्कूली शिक्षा को शिक्षा प्रणाली का आधार बताया।
1: ज्ञान और कौशल तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु बचपन में ही सदाचार की शिक्षा देना अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। आरंभिक कक्षा में बच्चों के बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास पर निष्ठापूर्वक ध्यान देकर हमारे शिक्षक अच्छे विद्यार्थियों और कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों की भावी पीढ़ियां तैयार करते हैं।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षकों का ये दायित्व है कि वे कुछ विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों में आत्मविश्वास जगाएं।
1: कुछ विद्यार्थी गांव के किसी सामान्य स्कूल से शहर के बड़े स्कूल में आते हैं और थोड़ा असहज हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी स्वभाव से ही संकुचित होते हैं। कुछ विद्यार्थी में बहुत प्रतिभा होती है, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो किसी कारण से कोई भी कमी महसूस करते हैं, उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें आगे बढ़ाना शिक्षकों का विशेष दायित्व होना चाहिए।
0: समारोह में 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के 48 चयनित स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की। ये व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए नियमित मंच प्रदान करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन

0: योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और नेपाल के बचाव दल का चिली में सुरंग में बचाव अभियान जारी है और सुरंग के भीतर से भारी मलबा, पानी तथा कीचड़ हटाया जा रहा है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने आज बताया कि बचाव अभियान को सुगम बनाने के लिए पास के स्याफ रुबेसी से सुरंग के प्रवेश द्वार तक एक पहुंच मार्ग का निर्माण भी चल रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आई। इस आपदा ने उत्तरी और मध्य नेपाल में व्यापक तबाही मचाई जिससे घर, सड़कें, पुल और जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हुई। इस बीच विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज स्वस्थ असहमति और विचार विमर्श की संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिक्स के सदस्य देशों और सहयोगी देशों के प्रतिनिधि मंडलों को संबोधित किया। एक रिपोर्ट।
3: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उचित न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने याद दिलाया कि नालंदा विश्वविद्यालय एक समय में सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक केंद्र हुआ करता था, जहां विश्व भर के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को बिना किसी भेदभाव या बाधा के प्रवेश दिया जाता था। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को भी जीवंत नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाना चाहिए। मध्यस्थता पर एक सत्र के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मध्यस्थता संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूत करने, पेशेवर प्रशिक्षण, बहुभाषी क्षमता और न्यायाधीशों, मध्यस्थों, वकीलों और व्यवसायों के बीच संवाद को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि संवाद कायम रह सके, व्यापार जारी रह सके और ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच विश्वास बढ़ सके। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत शिलालेखों और समुद्री व्यापार से लेकर गणित तक अपनी विरासत का अध्ययन करने और उसे दोबारा प्राप्त करने में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। नई दिल्ली में वार्षिक इतिहास पुरस्कार समारोह और डॉ एसएल भैरप्पा स्मृति व्याख्यान में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर है।
4: इंडिया टुडे इज सेल्फ अश्योर्ड।
3: हमने इस मामले में किसी और की अनुमति का इंतजार करना छोड़ दिया है और अब हम अपनी विरासत का अध्ययन खुद कर रहे हैं। हम शिलालेखों को पढ़ रहे हैं, अपने समुद्री व्यापार के इतिहास को समझ रहे हैं और गणित के जरिए कहानियों को पूरी प्रसन्नता और सटीकता के साथ सामने ला रहे हैं।
4: टेलिंग दी स्टोरीज विद रियल प्लेशर।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
5: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
7: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
2: ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के मेलघाट और पेंच बाघ अभयारण्य बंदी प्रजनित गिद्धों के पुनर्वास के लिए भारत के

0: सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं, जहां जीवित रहने की उत्साहजनक दर दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने सोमवार तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने आज सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी क्योंग को 21-16, 18-21, 21-11 से हरा दिया। और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 13 ओवर में 7 विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया, वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की GDP वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भावी पीढ़ी के उद्यमियों और वैज्ञानिकों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करने में शिक्षकों की भूमिका पर बल दिया। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reiterates 7.8% GDP growth amid global uncertainty reflects India's economic strength. Addresses SRCC students in New Delhi. President Draupadi Murmu stresses teachers' role in nurturing independent thinkers to create future entrepreneurs and scientists. India and Nepal continue joint operation to rescue people trapped inside hydropowered project tunnels in Nepal hit by flash floods. Melghat and Pinch Tiger reserves in Maharashtra emerge as most successful reintroduction sites for vultures. Heavy rainfall forecast in northern, northeastern states, sub-Himalayan West Bengal, Bihar, East Rajasthan, Delhi and Madhya Pradesh till Monday. And in China Masters Badminton, Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty enter the men's doubles final. Prime Minister Narendra Modi today said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. Addressing the gathering at the centenary celebrations of Shriram College of Commerce, SRCC, in New Delhi, Mr. Modi said the world is watching India become the fastest growing major economy.
2: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने से हुए देख रही। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
1: The Prime Minister said SRCC has given generations of students the opportunity to learn, grow and make a difference over the years. Mr. Modi said the college has distinguished itself over the years, making a mark for academic excellence. He termed the alumni of SRCC as very special and the OGs. The Prime Minister stated that former Finance Minister Arun Jaitley was an alumnus of SRCC. He said SRCC alumni have left their mark in every sector from arts to politics. He added that together 140 crore Indians will make India both Vikasit and Atmanirbhar.
2: जब कोई इंसान 100 वर्ष जीता है तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का होता है तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर हो जाता है। अपनी 100 वर्षों की इस यात्रा में एसआरसीसी ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा है। जो आए उन्होंने पढ़ा और जो निकले वो गढ़े हुए निकले।
1: Education Minister Prahlad Joshi in his speech praised SRCC for maintaining its high standards over the years. He said today, India is the third largest startup ecosystem under the leadership of Prime Minister Modi. The Prime Minister travelled by the Delhi Metro as he headed to SRCC to participate in the college's centenary celebrations. President Draupadi Murmu today stressed that teachers must be held in the highest esteem as they help India learn and lead. In an article on the occasion of Teachers' Day, President Murmu said encouraging independent thinking in students, igniting their curiosity, promoting the tendency to ask questions and sharpening their capacity for argument and judgment are among the most useful and rewarding dimensions of teaching. The president opined that it is only through such inspiring education that generations of entrepreneurs, scientists and creative artists can be raised. The president added that teaching is not merely a vocation but a vow. She also said the task of imparting education is not the responsibility of teachers alone. She said those who become role models for children through their conduct and achievements are also a valuable source of learning and inspiration. Earlier today, President Draupadi Murmu conferred the National Teachers Awards in New Delhi. 48 selected school teachers received the awards from the president. Addressing the event, the president said teachers have a special responsibility to build confidence among students from disadvantaged backgrounds, shy students lacking self-confidence and those with special needs.
3: कुछ विद्यार्थी गांव के किसी सामान्य स्कूल से शहर के बड़े स्कूल में आते हैं और थोड़ा असहज हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी स्वभाव से ही संकुची होते हैं। कुछ विद्यार्थी में बहुत प्रतिभा होती है लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो किसी कारण से कोई भी कमी महसूस करते हैं उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें आगे बढ़ाना शिक्षकों का विशेष दायित्व होना चाहिए।
1: The president asserted that education is the most effective means of realizing the ideal of equality of opportunity enshrined in our constitution. She also recalled Savitribai Phule's pivotal role in advancing women's rights and education.
3: Savitribai Phule आधुनिक युग में विद्यालय में पढ़ाने वाले भारत की पहली शिक्षिका के रूप में जाने जाती है। बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्रांतिकारी पहल की थी और 19वीं सदी में बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। आज के दिन क्रांति ज्योति स्वरूपा महान शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ।
1: On Teachers' Day, Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary honoured 37 teachers with the State Teachers Awards at a function in Patna. Mr. Chaudhary said the state government is committed to providing quality education to students and better facilities to teachers. This is Akashvani giving you the news.
4: News that keeps you informed. Follow us on X at AIR News Alerts and on Public at AIR News Alerts.
1: Welcome back, here with us on the news at 9. India and Nepal rescue teams are continuing a rescue mission at the Chilime Tunnel, removing heavy debris, water and mud from inside the tunnel. Ambassador of India to Nepal Naveen Srivastava said today, work was also underway to construct an access road from nearby Siafrobesi to the tunnel portal, to facilitate the rescue operation. In a social media post, Mr. Srivastava elaborated that given the difficult terrain and narrow valley, heavy helicopter usage is not possible. India continues to assist Nepal in the humanitarian assistance and disaster relief operations in the country. Separately, a Bailey Bridge is being built in

0: वंदे मातरम।
1: मातरम सुजला।